सुप्रभात, हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट

0: इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत वंदनवार।

आज का चिंतन। गौतम बुद्ध का ये कथन है कि क्रोध को मन में दबाए रखना वैसा ही है जैसे किसी गर्म कोयले को पकड़कर किसी और पर फेंकने की कोशिश करना। इससे हम स्वयं भी जलते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 215। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनेस। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम और 8:30 पर चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता जीवन पर और इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे रात 9:30 पर। सुबह 10 कार्यक्रम होगा पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1 सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा और 2 का समय त्रिवेणी कार्यक्रम का। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3 सखी सहेली। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग। रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसके अंतर्गत झलकी एक कुंवारा। लेखक हैं अशोक व्यास, निर्देशक हैं अरविंद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और रात 10 का समय है छाया गीत कार्यक्रम का। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर और रात 11 कार्यक्रम रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 215।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 215। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, अब तक हमने जो चर्चा की है, जो उदाहरण आपने हमें दिए, इसमें विविध तालों पर आधारित गीत जिसमें तबला वाद्य की प्रमुखता थी
2: जी,
1: उस पर बात हुई। और फिल्म संगीत की शुरुआत में तो तबला एक प्रमुख ताल वाद्य था संगति का।
2: हाँ हाँ।
1: लेकिन फिर ढोलक भी एक ताल वाद्य के रूप में आया।
2: हाँ।
1: तो फिल्म संगीत में तबले का जो दौर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तबले ने कैसे अपना रंग बदला, कैसे नूर बदला था, ताकि उसे ढोलक के साथ आगे बढ़ना था।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है वो शुरू में हमने तबले के जो शास्त्रीय संगीत के ताल है
1: जी, जी,
2: वो ताल कैसे इसमें भी आए हैं इसके बारे में चर्चा की। फिर उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो ताल किस तरह से आए
1: जी।
2: तो शुरुआती दौर जो है इसमें प्रमुखता तबले की थी, लेकिन फिर तबला जो है वो उसके जो सीने संगीत का जो दौर है उसमें कई सारे परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन जो है तबला वाद्य का वो आया ढोलक वाद्य के संग में। तो उत्तर प्रदेश का ये ढोलक वाद्य जो है वो काफी लोकप्रिय वाद्य है और उसका एक अपना ढंग है, बजने का ढंग है। जैसे हम लोग तबला में सोलो बजाते हैं, स्वतंत्र वादन करते हैं, वैसे ढोलक में भी स्वतंत्र वादन किया जाता है।
1: अच्छा।
2: तो इतना सारा साहित्य उसमें भी उपलब्ध है। अभी विशेषता यह है कि तबला जो है वो बंद बोल वाला है, इसमें शाही लगी हुई है
1: जी।
2: ढोलक में शाही नहीं है,
1: शाही नहीं होती,
2: वो खुला बजता है
1: जी।
2: तो ये दोनों का जब मेल होता है तब एक कर्ण मधुर ऐसा संगीत उसमें से उत्पन्न होता है
1: जी। जी।
2: तो हमने जैसे कहा कि कहरवा और दादरा ये दो ताल ऐसे हैं
1: जी
2: कि जिसमें कई सारे गीत बने हैं और वो अलग अलग पैटर्न से बने हैं, तो वो पैटर्न की वजह से वो अलग लगते हैं
1: जी। जी।
2: तो ढोलक के संग में तबला जब बजा, पैटर्न भी बदले, ढोलक के अनुसार कुछ पैटर्न उसमें आ गए और वो पैटर्न आने की वजह से वो गीत और भी सुंदर लगने लगा और भी अच्छा कर्णप्रिय लगने लगा। तो अभी जो कहरवा है वो कहरवा केवल धागे ना तिना कभिन, धागे ना तिना कभिन, ये मूल ठेका जो है ये जब ढोलक के संग में तबला बजता है तब ढोलक का अपना एक कहरवा बज रहा है और उसके साथ में तबले पर

0: मिसाल के रूप में हम कौन सा गाना सुनेंगे?
1: इसमें मिसाल के तौर पर मैं ना एक ढोलक का एक लहजा रखने वाला गीत जो है
0: जी
1: वो सुनाना चाहूंगा, दिल पुकारे आरे आरे,
0: ज्वेल थी फिल्म का गीत।
1: जी जी जी
0: जी जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाजें हैं, एसडी बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन।

0: तो ये कहरवा जो है, कहरवा ढोलक और तबले का मिला जुला फिल्मी गीतों में बजने लगा, तो उसकी खूबसूरती बढ़ गई।
1: क्या बात है। और मिस

0: श्रोताओं, ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीतकार सचिन देव बर्मन, ढोलक और तबले की खूबसूरती इस गीत में हमें दिखाई दी। रविंद्र जी, ये तो बात थी ढोलक और तबले के संयोग की, इससे जो नाद बना और ताल संगति हुई। लेकिन इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत के जो ताल वाद्य हैं, उनका भी हमारे देश में प्रवेश हुआ, हमारे संगीत में प्रवेश हुआ। कोंगो है, बोंगो है, ड्रम सेट भी, इस तरह के वाद्य जो आए, तो इस दौर में तबले का स्थान क्या है?
1: बड़ा अच्छा स्थान रहा है तबले का इस दौर में भी
0: जी,
1: क्योंकि ऐसा है कि हमारे फिल्म संगीत में कई सारे गीत ऐसे हैं कि जिसमें तबला जो है वो मेन सिंगर, मतलब जहाँ गीत चल रहा है, गाना चल रहा है
0: जी,
1: तो उसकी संगत कर रहा है तबला
0: जी,
1: और बीच में जो इंटरलूड बजते हैं, वो इंटरलूड मतलब म्यूजिक जो होता है बीच वाला दो अंतरों के बीच में
0: जी,
1: तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक है और वेस्टर्न के सारे परकशन उसमें बज रहे हैं
0: जी जी, ऐसे कई गाने हैं।
1: हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं सुनवाना चाहूंगा
0: जी,
1: नौशाद साहब का ही एक गीत है, आज की रात मेरे दिल का सलाम ले ले, राम और श्याम फिल्म
0: जी
1: का
0: जी,
1: गीत
0: बहुत सुंदर रचना है और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत का बड़ा अच्छा मेल देखने को मिलता है
1: जी।

0: श्रोताओं, फिल्म राम और श्याम का गीत आप सुन रहे थे, रफी साहब का गाया हुआ, संगीतकार नौशाद। और इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हमारी आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रंगीन रातें इस फिल्म का गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज, केदार शर्मा के बोल और संगीत है रोशन का।

रंगीन रातें फिल्म का ये गाना आपने सुना, आंखों की बात इसमें कही गई है। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। अगला गीत आपको सुनवाते हैं पटरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मीना कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं राज हट इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

भूले बिसरी गीत कार्यक्रम का अगला गाना जानेसार अख्तर का लिखा हुआ, ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम श्रीमती 420।

मोहल्ले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, अभी समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं देवदास फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार साहिल उथियानवी, संगीतकार एसडी बर्मन।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।

0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कैफी आजमी का लिखा और कमल मित्र का संगीत बद्ध किया ये गाना, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं

0: इतनी दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं अमर सहगल। इस फिल्म का गाना केएल सहगल की आवाज में, पंडित भूषण का लिखा हुआ गाना, पंकज मलिक का संगीत है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है CID, इस फिल्म का मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें हैं, जानेसर अख्तर के बोल हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब आपको घर फिल्म का गाना सुनवाते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आंखों आंखों में इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गाना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है ये और बिरजू उस्ताद ये फिल्म का नाम है।

अब आपको सुनवाएंगे तीन देवियां फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीतकार मशरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन। आज इन गीतों में आप सुन रहे हैं आंखों की या नयन की बातें। आज है विश्व नेत्रदान दिवस, तो अपनी आंखों का ख्याल रखिए और हो सके तो नेत्रदान की तरफ एक कदम बढ़ाइए। यही है हमारा संदेश।

हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धनवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, सहिल लुधियानवी का लिखा हुआ गाना और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने

0: का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा। दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री

0: सेतु योजना के तहत 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 225,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। FM बैंड 102.1 MHz पर। सवेरे के 8:15 हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत। लीजिए साथियों, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में कॉकटेल टू फिल्म के इस गाने के साथ।

आपका पसंदीदा राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत सुनिए ना हर बुधवार सुबह 10 बजे जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ ओनली ऑन FM सन सिटी। साथियों, ये फिल्म संगीत है जहां पर गाने जो है आपकी पसंदीदा, आपके जो सीने में धड़कते हैं वो प्ले किए जाते हैं और इसका जादू सर चढ़कर बोलता है। आपका पसंदीदा रेडियो चैनल FM सन सिटी। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं समीर अंजान का लिखा हुआ गीत स्टेबिन बैन की आवाज में। फिल्म का नाम बागी 4।

इश्क हुआ, किसको हुआ, किससे हुआ, ये हम नहीं बता सकते, पर हुआ ज़रूर है। आदित्य दिखारी और पायल देव की आवाज़ों में दे दे प्यार दे फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है, FM बैंड 102.1 MHz पर। सवेरे के 8:30 हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। नित नई जानकारियों और सुरीले गीतों से सजाकर एक नए दिन एक नए अंक के साथ हम हाजिर हैं। साल का 161वां अंक लेकर आपसे मुखातिब गुलनाज खान
1: और हिमांशु अवस्थी।
0: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: तो श्रोताओं उठ जाइए, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं खास पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार।
1: श्रोतो, आज के कार्यक्रम में बहुत सारे विषय आप तक पहुंचाएं, उससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं नमस्कार टीम से।
0: तो श्रोताओं, एचपीटी ट्रांसमीटर पर आज हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी।
1: एफएम ट्रांसमीटर से हमारा साथ दे रहे हैं सीएल सोनी।
0: और कंट्रोल रूम से आज कार्यक्रम को संभाल रहे हैं सुनील जयपाल।
1: श्रोताओं, कंसोल पर पीसी चैनल से हमारे साथ जुड़ी हैं शैला माहेश्वरी और एफएम चैनल पर हैं बलबीर।

0: कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की और संयोजन किया है राजेश लामरोड ने।
1: पूरी टीम के साथ आवाज और जज्बात के साथ एक नए अंक के साथ गुलनाज खान और
0: हिमांशु अवस्थी का इस्तकबाल स्वीकार कीजिए।
1: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ और उसके बाद बहुत सारी बातें।

0: गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

दोस्तों आज 10 जून है और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व भूगर्भ जल दिवस। वो पानी जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी जिंदगी उसी पर टिकी हुई है। अब जरा सोचिए, अगर एक दिन हमारे नलों में पानी आना बंद हो जाए, अगर खेत सूख जाएं, अगर धरती के नीचे का पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? राजस्थान, खासकर हमारा जोधपुर, पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में भूजल बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी सेवा भी है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये आवाज कितना सुकून देती है ना श्रोताओं। पानी शब्द सुनते ही आंखों के सामने नदियां, झील, तालाब और बारिश की बूंदें तैरने लगती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा उस पानी के बारे में जो हमारी नजरों से ओझल रहता है, जो धरती की गहराइयों में चुपचाप बहता रहता है, हमारी प्यास बुझाता है, खेतों को हरियाली देता है और जीवन को गति प्रदान करता है। जी हाँ, वही है भूगर्भ जल, यानी धरती की कोख में संचित अमूल्य जल संपदा। और आज उसी का जश्न मनाने का दिन है, उसी के प्रति जागरूकता फैलाने का दिन है और उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत को समझने का दिन है कि हम पानी इस्तेमाल कितना करते हैं। ये सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं जितना ये कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पानी बचाता कितना है।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: आसमान से बरसी, वो किसी छत से फिसली, मिट्टी में समाई और फिर धीरे धीरे धरती की परतों के बीच अपनी जगह बना ली उसने। वर्षों तक वो वहीं रही और फिर किसी कुएं, बावड़ी या हैंडपंप के रूप में लोगों की प्यास बुझाने लगी। यही है भूगर्भ जल की अद्भुत यात्रा।
1: दोस्तों जरा सोचिए, अगर पानी की एक छोटी सी बूंद हमसे बात कर

0: छोटी सी बूंद हमसे बात कर पाती तो शायद वो हमसे यही कहती, मैं छोटी हूँ लेकिन मेरे बिना आपका जीवन अधूरा है। मैं खेतों की हरियाली हूँ, नदियों का बहाव हूँ और हर जीव की प्यास हूँ, फिर भी लोग मुझे बेकार बहा देते हैं। सच तो यह है कि पानी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, लेकिन हम अक्सर इसकी कीमत तब समझते हैं जब इसकी कमी महसूस होती है। दोस्तों, आज शहरों में बोरवेल पहले 100 फीट पर पानी दे देते थे, लेकिन अब कई जगहों पर 500 से 700 फीट तक खुदाई करनी पड़ती है। बारिश का पानी ज़मीन में नहीं जा पाता, ज़रूरत से ज़्यादा पानी की हम बर्बादी करते हैं। लगातार बढ़ती आबादी और पानी बचाने की आदतों की कमी, ये सब मिलकर भूगर्भ जल दिवस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। हम आरओ का पानी बहा देते हैं, एसी का पानी नाली में चला जाता है और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, पानी प्रकृति का उपहार है, एक विकल्प नहीं।
1: जी हाँ, और ये भी हम समझते हैं कि इस धरती पर 75% पानी है, लेकिन गौर कीजिएगा, उसमें से सिर्फ 1% पानी ही पीने योग्य है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा घड़ा ले लीजिए आप, या एक जग ही ले लीजिए, एक जग में जितना पानी है उसमें से सिर्फ एक बूंद ही आपकी प्यास बुझाने को है, यानी इतना कम पानी है पीने योग्य। तो पानी पिए भरपूर, लेकिन बचाएं बूंद बूंद।

आज जब गांवों की बावड़ियां और कुएं केवल जल स्रोत नहीं थे, वो सामाजिक जीवन का केंद्र भी थे। सुबह सुबह घड़ों की खनक, पानी भरती महिलाओं की हंसी, कुएं के पास बच्चों की चहल पहल, और आज बदल गया है बहुत कुछ। कई स्थानों पर कुएं सूख चुके हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आगे आने वाली पीढ़ी अपने दादा दादी नाना नानी से पूछे कि क्या सचमुच कभी पानी जमीन से अपने आप निकल आता था, तो हमारा जवाब क्या हो सकता है। उसके लिए सोचना आज बहुत ज़रूरी है कि हम कुओं की सफाई रखें, बावड़ियों की सफाई रखें, तालाबों की सफाई रखें। और पिछले कई दिनों से हमारे शहर में जैसे गुलाब सागर को साफ किया जा रहा है, उसी तरीके से बहुत सारी बावड़ियों को भी जन आंदोलन के तहत लोग सफाई कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उसमें हमें अपनी भागीदारी देनी होगी, समझना होगा कि किस तरह से हम इन्हें ख़राब कर रहे हैं, अपना जो कचरा है वो इसमें डाल रहे हैं, यहाँ तक कि जो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ होती हैं उन्हें भी पानी में बहा रहे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, उसका सही तरीके से निस्तारण करना बहुत ज़रूरी है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम हैं जिनको उठाकर हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे हम अभी बारिश का सीज़न आने वाला है, तो हम बारिश के सीज़न में वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, घर की छत पर बारिश का पानी ज़मीन तक पहुंचा सकते हैं, टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं। खेती में ज़रूरत जितना ही पानी को इस्तेमाल कीजिए और पानी को रिसाइकिल करना भी सीखिए। आरओ और एसी का पानी पौधों या सफाई में उपयोग कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, लीकेज रोकिए। एक टपकता नल भी साल भर में हज़ारों लीटर पानी बर्बाद कर देता है।

0: और अपने बच्चों को पानी की कीमत को समझाइए।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहले के ज़माने में शहरों की बसावट इस तरह से होती थी कि आसपास की पहाड़ियों से पानी सीधा कुंडों में इकट्ठा होता था और जो तालाब होते थे उसमें जाता था, पावड़ियों में जाता था। लेकिन अब हमने वहाँ पर मकान बनाकर वो भी एक जो सिस्टम था उसको कहीं ना कहीं हानि पहुँचाई है, तो उस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा कि हमें किस तरह से पानी को बचाना है, एक एक बूंद को बचाना है। रसोई में जो इस्तेमाल होता है पानी, उसे आप अपने बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी से पहले की जो पीढ़ी थी, उस वक्त जब एसी नहीं थे, कूलर नहीं चला करते थे, उनके पास सरोवर थे, ताल तलैया थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पानी को बचाया, तभी आज हम लोग कूलर चला पा रहे हैं और इतना पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास जो ये पानी है, ये आगे आने वाली पीढ़ी की अमानत है और इस धरती की गोद में जो पलता है वो पानी जीवन का सार है, बूंद बूंद में बसता है आने वाला संसार है। आज इसे सहेजेंगे तो कल मुस्कराएगा जहां, वरना प्यासा रह जाएगा हर सपना हर मकान।

दोस्तों, हमने धरती से बहुत कुछ लिया है, अब उसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि अगर आज हमने पानी बचाया तो आने वाला कल प्यासा नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ विश्व भूगर्भ जल दिवस पर आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जल है तो कल है और भूजल है तो भविष्य है। तो श्रोताओं, वक्त हो गया है प्रादेशिक समाचारों का। प्रादेशिक समाचारों के बाद हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बैठक रखी गई है। बैठक में एनडीए के शासन करने वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा आरती और प्रार्थना सभाएं रखी गई हैं। देवस्थान विभाग के सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जैसलमेर स्थित बांके बिहारी मंदिर और पोकरण के बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा की गई। वहीं पाली के सुमेरपुर के जोगेश्वर महादेव मंदिर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पूजा कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बारा में भी जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। सवाई माधोपुर के रहने वाले जयदीप सिंह राजावत ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को उपयोगी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: मेरा नाम जयदीप सिंह राजावत है। मैंने सूर्यघर योजना में 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगवाया था, जिसमें मैंने मेरा जो राशि थी वो 2 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से मुझे 78,000 रुपए सब्सिडी के द्वारा किए गए केंद्र सरकार के, और इस स्कीम से बहुत लाभान्वित हुआ मैं। मुझे अभी तक एक भी बिल का राशि देने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इस स्कीम के लिए आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये आगे निरंतर बनी रहे।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
2: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन रहा है।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ये नारी चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर पर लगाई जा रही है। इन चौपालों का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। जैसलमेर में नगर परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारी चौपाल रखी गई है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। बाड़मेर में होने वाले आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर के सभी 5 ब्लॉक में नारी चौपाल लगाई जाएंगी। इनमें राजीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां

0: हिस्सा लेंगी। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सभागार में होने वाली नारी चौपाल में महिलाओं के लिए विभिन्न सत्र रखे गए हैं।
1: नारी चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम जैसे विषयों पर जागरूकता संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका समूहों की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन तथा विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कल हुई इस आगजनी की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। 3 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। मामले की जांच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। ये भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल देवांशी शर्मा ने अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर बी हैंड बैलेंस की व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने सीनियर सी महिला बैक बेंडिंग इंडिविजुअल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को ये पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी ये सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। तेज उमस भरी गर्मी और धूप की तपिश से लोग प्रभावित हैं। कल ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकांश हिस्सों में पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू में पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने और कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने तथा तेज धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई है। वहीं आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम फिर स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान
1: और हिमांशु अवस्थी। दोस्तों, अब एक जरूरी सूचना। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण और जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के लिए 10 जून

को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता श्री राजेंद्र मेहता ने बताया कि जोधपुर शहर के कायलाना चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 10 जून को होने वाली जलापूर्ति 11 जून को और 11 जून को होने वाली जलापूर्ति 12 जून को की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, अपने अंदर इतिहास आज का दिन कई कहानियां समेटे हुए है। आज है 10 जून, ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। आज के इस खास सेगमेंट में जानेंगे 10 जून से जुड़ी उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिन्होंने दुनिया की राजनीति, युद्ध, समाज और संस्कृति पर अपना एक गहरा प्रभाव डाला। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास सिलसिला।
1: साल 1246, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिल्ली के 8वें सुल्तान के तौर पर राजगद्दी हासिल की थी। आज के दिन ১৮২৯ में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीच पहली ऐतिहासिक बोट रेस हुई थी। इसमें ऑक्सफोर्ड विजेता रहा था। ১৮৪৮ में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहली टेलीग्राफ लिंक शुरू हुई थी। आज के दिन 1907 में चीन की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए फ्रांस और जापान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज ही के दिन 1931 में नॉर्वे ने पूर्वी ग्रीनलैंड पर कब्जा किया था। आज के दिन 1940 में इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी।

0: 1946 में राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बना था आज के दिन। 1966 में भारत में सोवियत संघ के साथ समझौते के तहत वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 F लाइन का निर्माण महाराष्ट्र के नासिक संयंत्र में शुरू हुआ था। श्रोताओं, MiG-21 फ्रंटलाइन इंसेप्टर 1971 की जो हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें इस एयरक्राफ्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। '71 में अमेरिका ने चीन के 21 साल के व्यापार प्रतिबंध को खत्म किया था आज के दिन। और 1972 में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित जलपोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था आज के दिन।
1: दोस्तों, 10 जून 1986 भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम दिन। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की थी। ये जीत भारत ने अपने 11वें प्रयास में हासिल की थी, जिसने भारतीय क्रिकेट का आत्मविश्वास पूरी दुनिया में बढ़ा दिया था। दोस्तों, आज का दिन सिनेमा जगत में भी बहुत खास रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म लगे राव मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला था। गांधीवादी विचारों को हास्य और मनोरंजन के साथ प्रस्तुत करने वाली इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई और कुल 4 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए थे। आज ही के दिन देश की सुरक्षा और आंतरिक तकनीक के क्षेत्र में भी 10 जून को का दिन बहुत अहम रहा है। केंद्र सरकार ने एकीकृत स्पेस सेल के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं और इसरो के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था, ताकि आंतरिक सुरक्षा और उपग्रह डेटा का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

श्रोताओं, ये थी 10 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं। इतिहास हमें सिर्फ बीते समय की जानकारी नहीं देता, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा भी देता है।

क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।

0: श्रोताओं, हर दिन गुजरता चला जाता है और हर दिन इतिहास बनता चला जाता है। आगे आने वाली पीढ़ी उस इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती है और ये मानव सभ्यता की यात्रा भी तो हजारों वर्षों पुरानी है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृति, परंपराएं और जीवन पद्धतियां हमारी दुनिया को विविधता से भरती हैं। लेकिन जब ये विविधताएँ संवाद के माध्यम से एक दूसरे को समझती हैं, तभी शांति, सहयोग और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी उद्देश्य से आज का दिन खास तौर पर मनाया जा रहा है। 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
1: श्रोताओं, दुनिया में विविधता जितनी बढ़ती जा रही है, उतना ही जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और आपसी संवाद को बनाए रखें। क्योंकि जब संवाद खत्म होता है, तब दूरियां और गलत फहमियाँ बढ़ने लगती हैं। आज दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। कहीं युद्ध है तो कहीं अशांति, कहीं विश्वास की कमी तो कहीं समाजों के बीच बढ़ती खाई। ऐसे समय में शांति और भाईचारे का सबसे बड़ा माध्यम है संवाद।
0: जी हाँ श्रोताओं, सभ्यताएं केवल इमारतों, स्मारकों या तकनीकी उपलब्धियों का नाम नहीं है। ये मनुष्य के विचारों, मूल्यों और ज्ञान और साथ ही साथ जीवन शैली का एक समग्र रूप भी है। दुनिया की महान सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र, चीन, यूनान और रोम की सभ्यता, सभी ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब संवाद की जगह टकराव होता है तो संघर्ष पैदा होता है। वहीं जब संस्कृतियां और सभ्यताएं एक दूसरे से सीखती हैं तो ज्ञान और प्रगति का नया अध्याय भी शुरू होता है। और भारत की तो हमारी अपनी एक सभ्यता है जिसमें हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की खिड़कियां बंद हो, मैं चाहता हूं कि हर संस्कृति की हवाएं मेरे घर में स्वतंत्र रूप से आए, लेकिन मैं उनसे उड़ ना जाऊं। कितने अच्छे विचार है ना श्रोताओं, कि हमें अपनी पहचान बनाए रखते हुए दूसरों का सम्मान करना आज का दिन सिखाता है कि किस तरह से हम दूसरों की संस्कृति को समझते हुए, अपनी संस्कृति को समझते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार दें।
1: दोस्तों, जब अलग अलग सभ्यताओं के लोग संवाद करते हैं तो भेदभाव और पूर्वाग्रह कम होते हैं। इससे आपसी विश्वास मजबूत होता है और शांति और एकता का वातावरण बनता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन 80 से ज्यादा देशों ने किया। इसे संदेश दिया गया कि दुनिया की सभी सभ्यताओं की उपलब्धियां पूरी मानवता की साझा विरासत हैं।
0: जी हाँ, और इस प्रस्ताव को चीन ने रखा था और 80 से ज़्यादा देशों ने इसे सह प्रायोजित किया था। और श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूसरे देशों की संस्कृतियों और उनके रहन सहन के बारे में समझते हैं और दूरियाँ भी कम कर दी हैं। तो आइए, जहाँ पर भौगोलिक रूप से दूरियाँ कम हुई हैं, वहीं पर ही हम मानसिक रूप से भी उन दूरियों को कम करें और इस धरती को रहने लायक एक खूबसूरत जगह बनाएं, जहां पर मोहब्बत की जमीन हो, मोहब्बत का आसमां हो।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
6: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

श्रोताओं, समय के दर्पण पे जहाँ कुछ लोग अपना भविष्य देखते हैं, अपना सुख और दुख देखते हैं, वहीं इस धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दर्पण में अपना चेहरा भी नहीं देख पाते, अपना वर्तमान भी नहीं देख पाते। तो बहुत

दुख की बात है कि धरती एक है लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग अलग है और इस रूप में हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम एक दूसरे को जागरूक करते हुए भी उन लोगों को समय के दर्पण में अपना चेहरा भी दिखा दें और ये खूबसूरत जो धरती है उसके नज़ारे भी उनको हकीकत में नज़र आएँ तो क्या ही खूब बात होगी। श्रोताओं, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक कहानी आप लोगों ने भी देखी होगी जिसमें एक पिता अपने किशोर उम्र के बच्चे के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। वो बच्चा खिड़की से बाहर देखकर पेड़, जानवर, आकाश और जो भी चीजें उसे उस ट्रेन की खिड़की से बाहर नजर आ रही थी उसे देखकर वो बहुत खुश हो रहा था, तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। ये देखकर जो सहयात्री थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बच्चा पेड़ देखकर इस तरह से खुश हो रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा हो, कैसे उछल रहा है ये किशोर। उन्हें बड़ा असहज लगा। बहुत देर तक सहयात्री वो सब देखते रहे, फिर उनमें से एक यात्री से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया कि भाई साहब क्या ये पहली बार पेड़ देख रहा है? तो पिता ने कहा कि हाँ हाँ, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं है क्योंकि उस यात्री ने जिसने जिज्ञासा से ही पूछा था कि क्या ये पहली बार पेड़ देख रहा है या रेल की यात्रा कर रहा है, तो पिता ने बेटे को दुलारते हुए कहा था कि असल में ये पहली बार सब कुछ देख रहा है, ये दुनिया देख रहा है, इसकी आंखों का प्रत्यारोपण हुआ है, दिखाई देने के बाद ये पहली बार रेल की यात्रा कर रहा है। अपने आप में ये कितनी भावुक बात है कि जो बच्चा पहली बार इस दुनिया में उस दुनिया के नज़ारों को देख रहा हो और उसके बाद हम असहज हो जाएं, तो क्यों ना हम भी उन नज़ारों को दिखाने के लिए अपनी ओर से कोशिशें करें। ये आँखें बहुत कीमती हैं।

0: दोस्तों कहा जाता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो वो है रोशनी। लेकिन जरा सोचिए, जिन लोगों ने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा, जिन्होंने कभी सूर्योदय की लालिमा नहीं देखी, बच्चों की मुस्कान या प्रकृति के रंग को महसूस नहीं किया, उनके जीवन में रोशनी का क्या महत्व होगा? इसी विषय पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अरविंद चौहान, जो कि नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं मथुरादास माथुर अस्पताल में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: कि सर आपने इतने व्यस्त समय में टाइम निकाला सर हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आप सबको नेत्रदान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नेत्रदान महादान आप सबको पता ही है कि अपन को सबको नेत्रदान करना चाहिए, जिससे कि जो अंधे लोग हैं उनको आंखों की रोशनी मिल सके
0: जी।
1: और भारत में इसकी सख्त जरूरत है। करीब आंकड़ों के अनुसार 10 लाख लोग हैं जिनको कि नेत्रदान की जरूरत है, और उनको अगर

0: कॉर्निया समय पे मिले तो उनको रोशनी मिल सकती है।
1: सर, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी की आंखों की रोशनी चली जाए तो उसकी पूरी जिंदगी अंधेरी हो जाती है। ऐसे में नेत्रदान एक ऐसा माध्यम बनता है जो किसी की जिंदगी में फिर से उजाला ला सकता है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में ही बताइए कि आखिर नेत्रदान होता क्या है।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है मानसू जी आपने। भारत के अंदर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की संख्या काफी अधिक है। इसमें मुख्य कारण है आंखों में चोट लगना, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो अनट्रीटेड रह जाते हैं। मरीज जैसे गांव में जी फिरा लेता है या मेडिकल स्टोर से लेकर दवाई डाल लेता है, तो उसकी वजह से भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है। और तीसरा है बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसमें कि बच्चों में हरी सब्जियों का सेवन कम करते हैं। ये तीन मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारत के अंदर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत अधिक है।
1: जी सर, एक सवाल मेरा इस चीज़ से और जुड़ा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नेत्र को दान करता है तो एक बार नेत्र दान करने से कितने लोगों की उसको फायदा मिल सकता है, कितने लोगों को?
0: अभी नई तकनीक के अनुसार हम एक कॉर्निया से 3 लोगों को रोशनी दे सकते हैं। जो कॉर्निया 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है और
1: जी
0: उस लेयर के हिसाब से जैसी रिसिपिएंट की बीमारी होती है, हम उसको मैक्सिमम 3 लोगों को लगा सकते हैं एक कॉर्निया को।
1: सर, अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक नेत्रदान से 3 लोगों को उसका फायदा हो सकता है, तो इसका कोई सही समय भी होता होगा कि कब आप नेत्रदान कर सकते हैं, कितनी देर के बाद, मृत्यु के कितनी देर के बाद आप नेत्रदान किया जा सकता है?
0: हाँ, जैसे कि अपने जनों की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले तो हम 4 से 6 घंटे का एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें हमें कॉर्निया को रिट्रीव करना होता है या लेना होता है। आपको सबसे पहले तो आई बैंक को इन्फॉर्म करना होता है डेथ होते ही। दूसरा, आप उस कमरे के पंखे ऑफ कर दें ताकि कॉर्निया ड्राई नहीं हो जाए। तीसरा, आप एक पिल्लो रख के उसके हेड को रेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, कोई गीली रुई या गीला कपड़ा आँख के ऊपर रख दें ताकि अगर टीम 4 से 6 घंटे में आती है तो कॉर्निया स्वस्थ रहे और ड्राई नहीं हो।
1: सर, नेत्रदान को लेकर एक ये भी है कि कुछ लोग अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो क्या वो लोग नेत्रदान कर सकते हैं?
2: डॉक्टर साहब, हम मोटे तौर पर ये जानना चाहेंगे कि कौन लोग हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं।
0: नेत्रदान किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है और किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है।
2: जी,
0: उसका कॉर्निया हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कॉर्निया मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होना चाहिए, तो किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है।
2: जी, और डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन लोग हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते। हाँ, जज्बात में आकर हमें लगता है कि हमें नेत्रदान करना चाहिए, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें हम नेत्रदान नहीं कर सकते। तो आज जबकि हम विश्व नेत्रदान दिवस मना रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन लोग हैं जो नेत्रदान नहीं कर पाएंगे।
0: कुछ स्पेशल बीमारियां हैं
2: जी,
0: मरीज उससे पीड़ित हो तो नेत्रदान नहीं कर सकता। जिसमें अगर शरीर में किसी भाग में कैंसर हो, आंख के किसी हिस्से का कैंसर हो, मरीज को कोई सेप्टिसीमिया या फिर बीमारी हो, या मरीज ने पॉइजन लिया हुआ हो, या बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं आई के अंदर, अगर उसकी वजह से कोई हुआ कॉर्निया खराब हुआ हो, तो कुछ बहुत लिमिटेड केसेज हैं जिसमें कि मरीज कॉर्निया नहीं दे सकते। बाकी अधिकतर 90% केस में मरीज कॉर्निया दे सकता है।
2: जी डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग नेत्रदान करें और जिन्हें दृष्टि नहीं मिली है उन्हें दृष्टि मिले, तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि हम जीवित रहते हुए अपनी आँखों की भी देखभाल करें ताकि रोशनी बरकरार रहे और हमारे जाने के बाद हमारी आँखें इस दुनिया में जीवित रहें और दूसरे व्यक्ति को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो अपने जीवन में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उसकी आँखों की रोशनी और आँखों की जो स्वास्थ्य कंडीशन है वो ठीक रहे?
0: आंखें आपके शरीर का सबसे मुख्य अंग है
2: जी,
0: ये स्वस्थ रहेगी तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ आंखों के लिए आपको अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और आंखों का जो ओवर यूज है, जैसे मोबाइल स्क्रीनिंग वगैरह पे आप करते हैं, वो आपको कम से कम करना चाहिए। और यदि आप आई डोनेट करना चाहते हैं तो 1919 ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे आप अपना टोल फ्री नंबर है, जिस पे आप अपने नेत्रदान को प्लीज कर सकते हैं।
1: सर, अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है या कोई व्यक्ति

0: बुजुर्ग है, तो क्या वो व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?
1: अवश्य 100% कर सकता है। चश्मा लगाने से या बुजुर्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कॉर्निया स्वस्थ होना चाहिए जो हमें ट्रांसप्लांट करना है।
2: डॉक्टर साहब, ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस वो है जिसको हम इलाज से ठीक कर सकते हैं, उसको प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस कहते हैं। जैसे बच्चों को विटामिन ए देकर हम उसका ब्लाइंडनेस ठीक कर सकते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके हम उसका ब्लाइंडनेस ठीक कर सकते हैं, कैटरेक्ट को सर्जरी करके हम उसका ठीक कर सकते हैं। तो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस वही है जिसको अपन इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है।
2: तो यानी कि नेत्रदान से पहले ये भी जरूरी है कि हम अपने आंखों की रोशनी को बरकरार रखते हुए कई ऐसे बातें हैं जो अभी आपने बताई उन पर ध्यान दें, ताकि हम भी उस अंधत्व की समस्या से जो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा लोग गुजर रहे हैं, वो चीज़ ना हो, जो अंधेपन से बचाया जा सकता है। तकरीबन इतने लोगों को उससे बचाया जा सकता है अगर वो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को अपनाते हैं और वो तरीके जो आपने बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और जब भी आंखों की सर्जरी होती है तो बड़ी घबराहट सी भी रहती है, और उसमें जैसा कि बहुत ही क्लीननेस के साथ में और स्मार्ट सर्जरी के हाथों से, और आजकल जो तकनीक आ गई है जिसमें फोल्डेबल आई लेंस भी प्रत्यारोपित किया जाता है, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी आप दीजिए डॉक्टर साहब।
1: जो आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से भी आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आप उन सब बीमारियों से बचें, अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, और समय पे अपना चेकअप डॉक्टर को दिखाते रहें, ताकि जो स्थायी ब्लाइंडनेस है वो नहीं आ जाए आपके। लोग अक्सर क्या बीमारी ऑपरेशन से और समय पे चेक कराने से बचते हैं, उसकी वजह से जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो फिर वो बीमारी रिकवरी के लायक नहीं रहती है। तो अपन समय
0: सर,
1: पे
0: अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की आई डोनेट करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो इसके लिए क्या कोई फीस लगती है, कोई शुल्क लगता है? किस तरीके से वो हॉस्पिटल से संपर्क कर सकता है, किस तरीके से?
1: हमारे आई बैंक का नंबर मैंने बताया 1919 है, और
2: वन
1: सिंगापुर आई
2: नाइन
1: बैंक का
2: वन
1: भी,
2: नाइन
1: हाँ, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप इन्फॉर्म करते हैं
2: जी
1: तो अब वो टीम आपसे एड्रेस लेगी और सीधी वहाँ पे आपको विद इन 1 to 2 आवर पहुँच जाएगी। फिर कॉर्निया लेने के बाद वो उसको उस पर एक आर्टिफिशियल आई लगा देगी, और तो आपके चेहरे पे कोई डिसफिगरेशन नहीं आएगा कॉर्निया लेने के
0: सर,
1: बाद।
0: जैसे कि आपने
1: इसमें
0: कहा
1: कोई
0: कि,
1: शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क है ये सुविधा।
0: जी सर, आपने कहा कि चेहरे पे कोई सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी, तो जब किसी व्यक्ति की आंखें निकाली जाती हैं तो क्या सच में आंखें निकाली जाती हैं कि इसके कॉर्निया को ट्रांसप्लांट, कॉर्निया निकाला जाता
1: जैसे
0: है?
1: आपका तो मोबाइल का स्क्रीन होता है, वैसे भी हमारा एक कॉर्निया होता है। हम
0: जी
1: सिर्फ उस कॉर्निया को निकालते हैं, आई बॉल को पूरा नहीं निकालते, और वो कॉर्नियल पार्ट ही ट्रांसप्लांट होता है।
2: जी
1: तो इसमें चेहरे पे कोई नहीं आती है।
2: डॉक्टर साहब, क्या किसी व्यक्ति को जीवित रहते हुए ही ये डिक्लेरेशन देना होता है कि वो आई डोनेट करना चाहता है, या ये जो हक है वो किसी और को भी अख्तियार है कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो ये डिसीजन ले सकते हैं?
1: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जीवित व्यक्ति ने प्लीज नहीं किया है तो जो निकट संबंधी बेटे या बेटी अगर हमें फोन करते हैं तो भी हम कॉर्निया ले सकते हैं। इसके लिए कोई नेत्रदान पत्र भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप समय पे आई बैंक की टीम को इन्फॉर्म कर दें।
2: जी, और ये जो नंबर अभी आपने हमें बताया, ये नंबर कहीं पर
1: ऑल
2: भी
1: इंडिया,
2: लगाया जा सकता है ना?
1: हाँ, 1919 ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है,
2: जी
1: और जोधपुर आई बैंक का नंबर भी आपको हमारी आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर मिल जाएगा।
2: सर,
1: आप वहाँ
2: इसमें
1: से
2: कोई,
1: इन्फॉर्म कर दें।
2: जी सर, कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है, जैसे परिजन को कैसे पता चलेगा कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने ये डिक्लेरेशन दिया है?
1: आप तो हमारी आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान साल में एक बार नेत्र दाता सम्मान समारोह करती है,
2: जी
1: जिसमें उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि उस परिवार से नेत्रदान प्राप्त हुआ है हमारे आई बैंक को।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है नेत्रों के बारे में और नेत्रदान से संबंधित। आज विश्व नेत्रदान दिवस है, तो इस खास दिन पर आप आकाशवाणी के मंच से हमारे श्रोताओं को अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
1: हम चाहते हैं कि युवाओं में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़े।

0: ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आए और नेत्रदान करें ताकि हम भारत से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को कम कर सकें।
1: जी, तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया नेत्रदान दिवस के अवसर पर। तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नेत्रदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर अरविंद चौहान से खास बातचीत, जो कि विभागाध्यक्ष हैं नेत्र रोग विभाग मथुरा दास माथुर अस्पताल में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: उसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे सप्ताह विशेष के हमारे सेगमेंट में। आज है इतिहास का दिन और इसमें बात होगी दीदारगंज की यक्षिणी पर। ये केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्ट सौंदर्य बोध और प्राचीन कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है।
4: श्रोताओं, साल था 1917 का। पटना के दीदारगंज क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे एक ऐसी खोज हुई जिसने भारतीय पुरातत्व जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 18 अक्टूबर 1917 को स्थानीय लोगों को मिट्टी में दबी एक विशाल प्रस्तर प्रतिमा मिली। इस खोज से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक चौकोर पत्थर जमीन से बाहर दिखाई दे रहा था जिसे लोग सामान्य पत्थर समझते थे। दूसरी कथा कहती है कि एक धोबिन उस पत्थर पर कपड़े धो रही थी तभी पास में एक सांप दिखाई दिया। जब लोगों ने मिट्टी हटाकर उसकी खोजबीन की तो एक अद्भुत स्त्री की प्रतिमा सामने आई।
3: श्रोताओं, करीब 5.5 फीट ऊंची ये प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी चमकदार पॉलिश और बारीक नक्काशी देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भारतीय परंपरा में यक्ष और यक्षिणियां प्रकृति और समृद्धि से जुड़े दिव्य पात्र माने जाते हैं। प्राचीन कला में इन्हें सौंदर्य, उर्वरता और संपन्नता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है।
4: श्रोताओं, कला विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिमा की चमकदार पॉलिश, उसकी सजीव मुस्कान और शरीर की बारीक बनावट उसे मौर्यकालीन कला की सर्वोत्तम कृतियों में शामिल करती है। जब आप इसके चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों में अपनापन है, चेहरे पर आत्मविश्वास और पूरी प्रतिमा में एक ऐसी गरिमा दिखाई देती है जो दर्शक को देर तक अपने सामने रोक कर रखती है।
3: दीदारगंज की यक्षिणी को एक सुंदर युवती के रूप में तराशा गया है। उसके हाथ पे एक चवर यानी राजसी पंखा दिखाई देता है, इसी कारण इसे चवर धारिणी यक्षिणी भी कहा जाता है। प्रतिमा के चेहरे की शांत मुस्कान, वस्त्रों की महीन रेखाएं और आभूषणों का सूक्ष्म अंकलन कलाकार की असाधारण दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। और श्रोताओं, इस कलाकृति को भारत का प्रथम 3D नारी मूर्ति होने का गौरव भी प्राप्त है और बेहद खूबसूरत ये प्रतिमा है।
4: दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मूर्ति केवल सौंदर्य का चित्रण नहीं बल्कि नारी के चार प्रमुख स्वरूपों मातृत्व, शक्ति, सेवा और सौंदर्य का प्रतीक है। यही कारण है कि कई शोधकर्ता इसे भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान और महत्व का एक अद्वितीय प्रतीक मानते हैं।
3: और अगर आप इसका दीदार करना चाहें तो दीदारगंज की यक्षिणी लंबे समय तक पटना म्यूजियम की सबसे लोकप्रिय धरोहरों में से एक मानी जाती है और इसके बाद इसे बिहार म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है जहां पर देश विदेश

आने वाले पर्यटक इसे देख सकते हैं। जी हां श्रोताओं, इस प्रतिमा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी किया है।

0: दोस्तों, समय के साथ खेलों का स्वरूप बदलता रहा है। कभी कबड्डी और खो खो गांव की पहचान हुआ करते थे, फिर क्रिकेट और फुटबॉल ने युवाओं के दिलों में एक जगह बनाई, और अब तकनीक के इस दौर में खेलों की दुनिया एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, ई स्पोर्ट्स की दुनिया। आज की खास बात इसी बदलते खेल जगत और नई संभावनाओं पर। हाल ही में राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। क्राफ्टन इंडिया द्वारा आयोजित बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज यानी BMPS का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 19 से 21 जून तक सीतापुरा स्थित JECC में होने वाले इस मेगा आयोजन में देश भर के शीर्ष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतियोगिता का कुल प्राइज 4 करोड़ रुपये रखा गया है। वही राजस्थान में आयोजित होने वाली अपनी तरह की सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स लैन चैंपियनशिप मानी जाती है। यह आयोजन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि बदलते भारत की तस्वीर भी है। ये बताता है कि आज प्रतिभा केवल मैदानों तक सीमित नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी युवाओं को अपनी क्षमता दिखाने और करियर बनाने के अवसर दे रहे हैं। ई स्पोर्ट्स को अक्सर लोग सिर्फ मोबाइल गेम समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे घंटों की तैयारी, रणनीति, टीम वर्क, एकाग्रता और मानसिक मजबूती छिपी होती है। जिस तरह एक क्रिकेट खिलाड़ी नेट्स पर अभ्यास करता है, उसी तरह ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी लगातार अपने स्किल्स को निखारता रहता है। जयपुर में इतने बड़े स्तर पर इस आयोजन का होना राजस्थान के लिए एक नई पहचान लेकर आ रहा है। ये दिखाता है कि हमारा प्रदेश सिर्फ इतिहास, संस्कृति और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि नई तकनीक और उभरते हुए खेलों के लिए भी तैयार है।
1: और श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो अब वक्त इतना रह गया है कि बस चंद घड़ियां बाकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 का आगाज होने वाला है 11 जून से 19 जुलाई तक ये आयोजन किया जाएगा। अपने आप में ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महाकुंभ है, और इतिहास में पहली बार 3 देश अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट में पहली बार 32 की बजाय 48 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें 104 मुकाबले खेले जाएंगे। मेज़बान शहरों में 16 शहर तो हैं जहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें 11 अमेरिका में है, 3 मैक्सिको और 2 कनाडा में है। और इसका खिताबी मुकाबला 19 जुलाई सन 2026 को न्यूयॉर्क के स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से इंतज़ार करते हैं फीफा वर्ल्ड कप का। तो बस तैयार हो जाइए, कल से इसका आगाज़ होने जा रहा है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सभी के अपार प्रेम को समेटते हुए इस कार्यक्रम को भी अब हम यहीं समेट रहे हैं। तो आज के अंक को समाप्त करने की गुलनाज खान और
1: मैं हिमांशु अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: ये FM सन सिटी चैनल है, लीजिए सुनिए राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।

आज तो भाया बुधवार है और एफएम सनसिटी माते जद आलोक धुन बाजे तो सगड़ा ने ठा पड़ जावे है कि मरुधरारा गीत कार्यक्रम शुरू वे को है।

ज्यों मोती गूथ बने सुंदर हार ज्यों मोती गूथ बने सुंदर हार त्यों रिश्ता री डोर सुबंध बने परिवार देखो भया की बेमातारा लिख्योड़ा आखर और कर्मारा जोक सू विधातारी मर्जी थका एक मानवी टाबर रूप में इन संसार मायकिणी परिवार में जन्म लिया करे है इन संसार में जन्म लिया रे पछे मिनक सगड़ा सू पहला परिवार लोगा सु हिज परिचित हुया करे है और भाया ए परिवार रा लोग खून रे रिश्ता सू बंधियोड़ा वे है परिवार सु हिल मिल उनारे साथे प्रेम सु आप रे जीवन री यात्रा शुरू करे है एक मानवी तो भाया परिवार रे बिना इन जगत में मिनक एकलो है और परिवार साथ हिज वो आपरे जीवन ने गति दे सके है जीवन यात्रा ने धके बधाए सके है इन वास्ते हर मिनख मानवी रे वास्ते परिवार घणो महत्व राखे खून रे रिश्ता सु इन जगत में बने परिवार हमेशा सुख दुख में साथ रहवे परिवार तो भया आज परिवार रे रंग सु रंगियोड़ो है जको खून रे रिश्ता सु बंधियोड़ो है और मदरा मदरा लोक गीता सु सजियोड़ो है आप रो मन मोउणो हिवड़े बसियो मायड़ भाषा ने समर्पित रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत कार्यक्रम रो आज रो नुवो अंक लेर हाजिर होयो हूँ मैं इन संगीतमय रथरो सारथी और आप रो दीवानो दोस्त बलवीर मैं हूँ छोरो जोधपुर रो आप सगड़ा हितड़ू श्रोताओं ने सीर का साइनो ने नया नवेलो ने और बड़ा बड़ेरों ने मारा राम राम एक मेनक वास्ते परिवार कितो जरूरी है क्यों जरूरी है और उनरे जीवन में काई महत्व है परिवार रो अब इनरी बात कर पर अबार तो देखो कि आपे अंतर लगाए ना कपड़ा माते सेंट लगाए ना इनरी खुशबू जो को है चारों मेर फैलाए ना ताकि लोग पूछे कि भाया ओ अंतरियारो डपटो कौन लगायो हो घनी चौकी खुशबू आवे है तो इन वास्ते बनिया रहो एफएम सनसिटी रे साथ है और सुनता रहो जोधपुर छोरे बलवीर ने

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी।
2: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: FM सन सिटी रे इन आंगणे इन बखत आप सुन रिया हो मायड़ भाषा जन जन ताई पुगाव तो मायड़ भाषा री ओळखाण कराव तो आप रे हिवड़े बसियो राजस्थानी भाषा रो नूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरा रा गीत। आज बात कर रिया है भाया कार्यक्रम में परिवार री, जो को खून रे रिश्ता सु बंधियो रोवे है। परिवार किन बात बने हैं, मेनखरे जीवन में क्यों जरूरी है कि तो महत्व रखे, इन सगले आपे बात कर रहा पर उन सु पहरा करा आप स्वागत नंदन वंदन हमेशी बात मारे अंदाज में। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, केसर सुपग धोवता घरा पधारो पीव, और बधाई क्या देवा थापर वारा जीव, थापर वारा जीव। देखो कि इन ढोल थाली रे साथे आपरो स्वागत कर रहा, नंदन कर रहा, वंदन कर रहा, आपरो अभिनंदन कर रहा। आपने मायड़ बोमड़ी पहचान है कि घर आया जिका मेहमान है पावणा है उन्होंने बधाने लिया कर रहा, तो आपने बधाने लेवा, आपरो तिलक करा, आपने फेटो पहरावा। और भैया आप सगला ने ठा है कि आ ढोल थाली FM सन सिटी माते जी की बाजे इनरे माथे आपानी नारी शक्ति जकी है वा घूमर घालिया करे है। घर में जठे भी वे चाहे वे बासन बर्तन करे, झाड़ू कटको करे, बड़ा बुजुर्गारी सेवा करे, या पछे घर में कोई भी दूजो काम काज करे, आपरी रसोई में भोजनशाला में भोजन पकावे, जठे भी वे उन्हारे कानारे कने मरुधरारा गीत गूंज तो रहवे है, और जदा ढोल थाली बाजे तो थोड़ी जेज घूमर घालिया करे है। तो आप भी थोड़ी जेज घूमर घाल लो और आपके साथ मैं भी ठुमका लगा लूं जो मने लगावणी आवे है।

देखो कि माने स्टूडियो में तो आज जगह है माने साथी गुलनाज और शैला हागेड़ी घूमर घाल रिया है और आज तो इनारो जिको है घूमर घालन में साथ दे रिया है माने साथी हिमांशु।

देखो कि आ ढोल थाली तो बाजे जीती कम है, इंटर माथे तो अपना पगलिया जेका है रुके ही नहीं है, और माना जी का साथी है स्टूडियो में ए तो रुकन रो नाम ही नहीं लेवे है। पण भाया अबे कार्यक्रम ने भी धक्के बदावणो है, क्योंकि घणी जोरू नाचो जदे कही है कि काम करता थका थकान भी वे

जाया करे, एहसास भी भूल जाया करे, है कि नहीं? तो आवा परिवार ने बात करता था का कार्यक्रम ने धके बदावा। परिवार जो को खून रे रिश्ता सु बंधियोड़ो वह है। देखो भया कि वे रिश्ता जका जलमता ही आपने साथे जुड़े है, जिन रिश्ता सु आपनो नाम चाले, जिन सु आपनो खून रो संबंध वे है, वो है परिवार। और परिवार मिनख रे सगला सु नेड़ो होया करे है। और भया एक बात हाची है कि इन रिश्ता रे चैन माथे किनी रो भी जोर नहीं चाले, किनी भी मर्जी नहीं चाले। अठे तो बे मातारा लिखियोड़ा आखरी भणिजे है। और भया आ बात भी हाची है कि कर्मा रे जोक सुहीज मिनक ने परिवार रो सुख मिलिया करे है। और परिवार रो सुख किन सू कित्तो और कठे मिलेला, विदा थारे लेख माही पहली ही मान जुड़ा रहे वह माया। और ए विदा थारा लिखियोड़ा लेख रा आखर सांच करण सारू मिनक अठे इन माया लोक में इन धरती माते कठपुतली वेजू नाचिया करे है। मारी कोकसू इन दुनिया में आर परिवार और सुख मिनक भोगिया करे है। और परिवार सगला रिश्ता सु मिलियोड़ा लगाव, सगला रिश्ता कौन कौन सा? आपरा नजदीकी रिश्ता बाबोसा, आपरे काकोसा, दादीसा, दादोसा, बहन, आपरा भाई, आपरा जी का नजदीकी रिश्ता है, ए इन परिवार में बहुत अटूट रिश्ता में गिनी जा करे है। तो भया ए सगला रिश्ता सु मिलियोड़ा लगाव, हेत और प्रेम जीवन री चाव ने बनाने राख्या करे है एक मानवी रे। इन तरिया भया मिनख आपरो पूरो जीवन परिवार रे साथे रहता थका, हसी खुशी सु गुजारता थका, जीवन री यात्रा जिकी है आप पूरी करिया करे है, इनने गुजारिया करे है। है कि नहीं भया एक दार्शनिक बात? ए तो देखो कि अपन बड़ा बुजुर्ग जिका है अपना बढ़ेरा वे क्या करे है। और जब आपे चौपाल रे माथे जावा और इनारे साथे बैठा उना सु बतियावा उनारा पगलिया जिका आपे दाबा, जद वे आप अनुभव रो खजानो जको है वो थोड़ो खोलिया करे है। और उन खजाना मुँह की जिका है अशर्पिया ज्ञान रूपी अशर्पिया अपन दिया करे, जद जान ठा पड़े है कि परिवार कितो महत्व है एक मानवीय वास्ते, है कि नहीं? और अबार तो देखो कि गर्मी हागेड़ी पड़े है, कूलर न पंखा भी जगह है नहीं रे बराबर काम करे है। और जद आप ही घर धनियाणी, आप ही जोड़ायत, आप ही प्रेसी, जद एसी लावण री, एसी घर में लगावण री जिद कर देवे तो आदमी रो कई हाल वे है। और तो देखोगे जितो पसीनो इन सूरज भगवान रे ताप सुनी आवे, उतो पसीनो तो घर धनियाने री बात सुन रहे आ जाए करे है। तो वह तो क्या वह है भाया कि गर्मी पड़े है एसी लगाई तो। आप तो सुनता रहो एफएम सन सिटी जोधपुर छोरे बलवीर साथ है। और अब एसी तो घर में लगाई लो, लगाओ नहीं लगाओ वह आपकी मर्जी है सा।

0: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
1: अरे FM सन सिटी ट्यून कर।
2: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: 102.1 FM सन सिटी जोधपुर शहरी धड़कन, जटे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। अबार सुन रिया हो मायड़ भाषारो सजीव रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत, जिन्हें आप सुनिया करो हो हर बुधवार रे दिन सुबह 10 बजे सु लेर 11 बजे ताई पूरे एक घंटे आनंद उठाई रिया हो जोधपुर छोरे बलवीर रे साथ है। और भैया आज कार्यक्रम में आपे बात कर रिया हां परिवार री, जको खून रे रिश्ता सु बंधियोड़ो वे है। देखो भैया की परिवार मिनख रे वास्ते घणो अहम वे है, घणो जरूरी वे है। इन परिवार बिना तो उनको जीवन जो को है एक खालीपन सो एहसास करावे है। और भया ओ बतावण सारू रामायण और महाभारत जड़ी अपनी धार्मिक पोथियां हैं, उनमें जीवन रो लूंठो उदाहरण अपन हमी पेश करियो है। अपने जिका ए धार्मिक ग्रंथ जिका है जिनने आपे पूजा, उनमें परिवार रो सुख और परिवार रे टूटन री कई दास्तां वे सगली बाता अपने बताई है, इनसु अपने सीख मिले है। अब देखो कि एक ग्रंथ परिवार रे भेड़परी गाथा कया करे है, तो दूजो ग्रंथ जको है उनमें परिवार बिचाड़े अभिमान और लालच रे परिणाम री बात बतावे है।

अब देखो कि रामायण काल में एक पारंपरिक प्रेम रो बाग लगावटी बात कहया करे है, तो दूजो महाभारत काल है, उनमें उजाड़ बनावन वाला कारण आपने समझाया है कि परिवार किन कारण ने टूटे है, रिश्ता रे बीच में दरार क्यों आया करे है, ओ कारण बतावे है। माया ए धार्मिक ग्रंथ आपने बताया है कि त्रेता युग में जब परिवार हिल मिल रहे रहव तो वो परिवार राजवंश बन जाव तो, जो कि प्रभु श्री राम रो राजवंश। और जब मिनख द्वापर युग रे भांति आपरे थोड़ो सो सुख और लालच रे कारण परिवार री पीढ़िया रो जीवन दुख में बना दिया करे है, तो परिवार टूट जाया करे है, रिश्ता में दरार आ जाया करे है, और मत भेद जगह है मन भेद में बदल जाया करे है। इन वास्ते भया परिवार रे साथे मान खाने रहनो जरूरी है, क्योंकि परिवार सुईज संस्कार मिले है और जगह पीढ़ी दर पीढ़ी धके बदता रहवे है कि नहीं। अपना बड़ेरा हाची बात कहवे है, और ए बात जिकी है ए अनुभव री बात, उनारे अनुभव रे खजाने री बात उनारे करने बैठा, जदे वे आपरे खजाने रो ताड़ो खोलिया करे है, और जदे अपन अनुभव देवे और वो अनुभव अपन जीवन में उतारा, तो अपनो जीवन जो है सरस हो जा, सरल हो जा, और परिवार रिश्ता मजबूत हो जा, और अपन जीवन जाता जिकी है मान खा रूपी आ सुचारू रूप सु चलती रहे, हस्ती गाती चलती रहे है कि नहीं। इन वास्ते परिवार रो महत्व समझनो घणो जरूरी है भाया।

देखो के ए लोक गीत आप प्रसारू एफएम सनसिटी माते मरु दरारा गीत रे कार्यक्रम के माध्यम से, तो बस बढ़िया रहो एफएम सनसिटी माते और सुनता रहो जोधपुर छोरे बलवीर ने।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
2: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
3: अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तू?
4: अरे जा कहाँ रही हो, सवारियाँ छोड़ के आ रही हो तो।

0: ये मनकार गाना बहुत बढ़िया आ रहा है।
1: एफएम सन सिटी, सन सिटी, एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह। 102.1 एफएम सन सिटी आपरो अपनो रेडियो चैनल जिन्हें आप सुनिया करो हो हमेश सुबह सुलेर रात ताई क्योंकि अठे मिले है अभाया आपने शुद्ध मनोरंजन। इन बखत आपरे परिवार और मित्र मंडली रे सागे बैठ आनंद उठाई रिया हो मायड़ भाषा रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत रो। और भैया आज कार्यक्रम में बात कर रिया हां आपे परिवार री जका खून रे रिश्ता सु बंधियोड़ो वे है।

देखो भैया की परिवार साथे रे रे एक मिनख संस्कारवान बनिया करे है वो आपरी जीवन यात्रा में संस्कार ने नी छोड़िया करे है बड़ारो आदर करनो माँ बाप री सेवा करनी कुटुम्बरा बाकी रिश्ता भाई बहन काकोसा दादूसा उन्हारे आदर करता थका उन्हारे सु प्यार करनो जिन सु परिवार सदस्य हमेशा वास्ते एक हो जाया करे है और संयुक्त परिवार रूप में साथे रहया करे है और भया संयुक्त परिवारी जिकी प्रथा कह दो इंड्रो जो को रिवाज है वो अपना ठे तो है ही है अपना बुजुर्ग जगह है अपना बड़ेरा जगह है पूरे परिवार ने साथ लेर चा लिया है चाहे परिवार कितो ही बड़ो हो वो एक ही घर में और एक ही चूल्हे खानो बनतो और भया ए एज भाव जगह है अगली पीढ़ी ने इनारे मार्ग माथे चालन री सीख देवे है जो कि आपना बड़ेरा आपने दी है भाया मारी आप बात जकी है वह परिवार रे प्रेम री चाशनी में डूबियोड़ी मिष्ठान है भाया मारी आप बात संयुक्त परिवार रो लूंठो और अनोखो चित्राम है मारी आप बात भाया विरासत माही मिल्योड़ा संस्कारा रो प्रकट रूप है भाया मारी आबात आज रे टेम परिवार रे एक साथे रेवन रो सुपड़ू देखन वाला माँ बाप री बाट जोता उनारा एक तरह रो इंतजार है भाया उनारी उड़ीक है भाया क्योंकि भाया आज रे बखत में परिवार रिश्ता धन और माया सारू बिगड़ता रिश्ता बन गया है कि नहीं संयुक्त परिवार में रेवनी जी की अपनी रिवाज है उनने आपे भूलता जा रहा हाँ इन शिक्षा ने आपा जी की बड़ेरा आपण दी है उनने आपे बिसराई दिया हाँ हकीकत तो आ है भया कि परिवार रे साथे रेवन सारू धैर्य री जरूरत पड़े है इन धैर्य ने आज रे टाइम आधुनिक समाज जो है आज रो मॉडर्न समाज जो है वो भूल गो है पहला तो भया पड़ोसी भी परिवार होता और अबे परिवार भी पड़ोसी वेगा है कि नहीं भीता खींच खींच घर बन गया पण टूट गया परिवार भीता खींच खींच घर बन गया पण टूट गया परिवार भीता मना में खींच गी बैठता जीमता जिंडरा रे साथ बैठना जीमता जिंडरे साथ ओ परिवार घणो महताऊ है एक मानवीय वास्ते है कि नहीं आई बात मैं रेडियो माते आपने क्या वहां और इन सारू तो टेशन टेशन जो है रेडियो लगाया हाँ आपके वास्ते

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
1: एफएम सन सिटी
2: पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह
3: एफएम सन सिटी 102.1 एफएम जिन्हें आप ट्यून इन करियो हो आपरे मोबाइल और रेडियो सेट माथे और दूर दराज इलाका और सात समंदर पार न्यूज ऑन एआईआर ऐप रे माध्यम से श्रोता इन कार्यक्रम से जुड़िया करे है और भाया अपना श्रोता मनोरंजन करिया करे है सुबह सु लेर रात ताई आप रो अपनो रेडियो चैनल एफएम सन सिटी जटे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन अब आर सुन रिया हो मायर भाषा मैं बात बंतल करतो मायर भाषा नई पीढ़ी री जबान ताई लाव तो लोक रंजन रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत सुन रिया हो आप जोधपुर छोरे बलवीर रे साथे और भाया आज आपे कार्यक्रम में बात कर रिया हां परिवार री जको खून रे रिश्ता सु बणियोड़ो वे है देखो भया कि माटी रे मटकारी और परिवार री कीमत सिर्फ बनावन वालो ही बताई सके है घर्रा बढ़ेरा आपाना बड़ा बुजुर्ग जगह है आपरे बखत परिवार ने एक राखता आया हा परिवार चाहे कितो ही मोटो हो तो उनमें कितना ही मेंबर वेता सदस्य वेता पण चूलो तो घर में एक ही बढ़तो कितना ही बर्तन माज जिकाए आपस में बाज जावता मतलब के मन मुटाव भिजाव तो पण पड़ोसी ने खबर तक नहीं लागती और इन छोटे से इन झगड़े में परिवार सदस्य राज्य का मतभेद है वे मन भेद में नहीं बदलता भाया ये अपना बड़ेरा जगह है ये तो बदलन देवता ही नहीं रिश्ता में प्यार बनियोड़ो रहनो चाहिए ऐडी कोशिश करता पण भाया आज री टाइम आपा ज्यों ज्यों आधुनिकता रा पागोतिया चढ़ता गया हाँ आपे धीरज खोवता गया हाँ परिवार बिखरता गया ए संयुक्त परिवार सु आपे एकल परिवार में दो कदम आगे बढ़ गया हाँ बस मैं दो और मारा टाबरिया आपे भावना राखी हाँ और बाकी रिश्ता जगह है उन्होंने आपे बिसराई दिया हाँ आज रे टेम आधुनिक तारा पागोतिया चढ़ता चढ़ता आपने खुद रे स्वार्थ रे कारण है और भाया जद परिवार टूटे भाई सू भाई अड़गो वे है तो भाया घर्रा जगह बड़ा बुजुर्ग है घर्रा माँ बाप जगह है उन्होंने कालजा में जाने तलवार मारी वे जाने उन्हारे कलेजे में तीर चुप गो वे जद भाई सू भाई अड़गो वे है जद परिवार टूटे घनी पीड़ा वे है भाया उन्होंने पण वे काई कर सके है जीवन में आगे बढ़न री चाह आचा आपानी खुदरी उन्हारी पीड़ा बनगी है और आपानी इन चाहरे कारण ही उन्हारी आ पीड़ा भी दबगी है भाया परिवारे लोगारा मतभेद मन भेद में बदल गया है और गर्रो चुल्लो चुको है न्यारो वे जाया करे है इन कारण है भाया और आज तो ओ जुको चित्राम है अपने समाज में

अपने आती पाकती आपे निजरों देखा हाँ। भाया एक बात मैं कहनी चाहूं हूं, आप कहनी तो नहीं चाहिए पर एफएम सन सिटी री पूरी टीम री एक छोटी सी कोशिश है वह आपती पुगावनी जरूरी है भाया। इन्हें आप संदेश कह दो, एफएम सन सिटी री पूरी टीम जकी है उनरी एक कोशिश कह दो के भाया आप परिवार सु बिछड़न री पीड़ा ने महसूस करो और कोई परिवार सु अलगो नहीं होनो चाहिए एड़ो वचन लेवो भाया। भगवान आपने मिनखा जून दी है तो परिवार की कीमत समझा और मोतिया सु मूंगा पारिवारिक रिश्ता ने प्रेम भाव सु सगला रे साथ रेर निभावा भाया। और आई शिक्षा जकी है अपनी अगली पीढ़ी ने आपे देवा। जदे तो आपने जिका है परिवार का रिश्ता जिका है घर का रिश्ता जिका है मजबूत वेला और एकल परिवार में जिका अबार आपे जाने रहन लागा ए पाछा आपे संयुक्त परिवार में आपे आई से कहा इन जिकी अपने बड़ेरा जिकी इन डोर ने लेने चाह लिया उनसे आपे पाछा जुड़ सका हाँ। एक छोटी सी कोशिश एफएम सन सिटी की तरफ सु आभार। बाजियो सो बाजियो चंगरी थाप माते कई म्यूजिक है और संगीत और लोक संगीत सिर्फ एफएम सनसिटी माती ज बाजे है भाया।

देखो भैया कि पान तंबाकू रिवो या पचे दूजो किनी तरह रो नशो हो, दारू रोवो, चिलम रोवो, किनी तरह रो नशो तो अपने करनो नहीं है। अपने तो परिवार साथे भेड़ो रहनो है। नशो जको है परिवार ने तोड़ दिया करे है। तो इन सारू अपने नशा सु दूर रहनो चाहिए, अड़वो रहनो चाहिए, उनसे तो सो कोस दूर रहनो चाहिए। आज बात है, छोटी सी बात है, इन्हें लोकगीत के माध्यम

देखो भैया की परिवार एक मिनक वास्ते घणो महताव है परिवार बिना मिनक भीड़ में भी एकलो है हमेश सुख दुख में हारी बीमारी में जीवन रे हर पड़ाव में साथ रहवे है परिवार भैया आप कितना ही बड़ा बन जावो कितो ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल कर लो या पछे दुनिया रो सगड़ो भौतिक सुख आप रे खूड़े में ले लो पण परिवार रे बिना खून रे इन रिश्ता रे बिना उनारो कोई अस्तित्व नहीं है भाया क्योंकि परिवार प्यार रो दूजो नाम है एफएम सन सिटी रे पूरी टीम री तरफ सु आप सगला रो धन्यवाद आभार के भाया आप इन कार्यक्रम ने घणो पसंद करो हो आपरे पसंदीदा कार्यक्रम की सूची में सैसु ऊपर राखो हो आपरे हेवड़े बसायो हो और आपरे परिवार और मित्र मंडली रे सागे बैठने इन कार्यक्रम ने सुनिया करो हो इन सारू एक बार फेरू आपरो आभार धन्यवाद अबे देखो कि कार्यक्रम रो टाइम अटे पूरो वेरियो है चालता चालता ओइज क्यों के दिन जको परिवार रे साथे गुजरे वो है जीवन और भाया दिन जको परिवार रे बिना गुजरे वो है उम्र अबे परिवार रे साथे अपनी जिंदगी जीवनी है या परिवार रे बिना आ उम्र गुजारनी है वो अपने हाथ में है कि नहीं छोटी सी सीख और मानो तो वही कहना है भैया परिवार के साथ उम्र गुजरनी चाहिए परिवार के साथ ही अपनी डोर रिश्तारी मजबूत रहवे है अबे जोधपुर छोरे बलवीर ने दिलाओ सीख राम राम सा

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: भाई साहब, नमक के डिब्बे के भी अपनी एक कहानी है। ये रसोई में अपनी मर्जी का मालिक होता है, या तो गायब रहेगा या सीधे सब्जी में जाके सुसाइड कर लेगा। लोग कहते हैं कि घर के खाने में रेस्टोरेंट वाला स्वाद नहीं आता, और भैया मैं कहता हूँ कि घर के खाने में रेस्टोरेंट की तरह अजीनोमोटो नहीं, माँ का प्यार और थोड़ा सा डांट डपट डलता है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं FM सन सिटी का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट, जिसमें खाने की खुशबू होती है बातों के जरिए और जहां हर बात में थोड़ा स्वाद है। मैं हूं इस शो का शेफ, आपका दीवाना दोस्त बलबीर। मैं हूं छोरा जोधपुर का, कहता हूं आपको हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग। और भैया जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। अगर आपकी मम्मा कहती है कि इतना खाना तो होटल में भी खराब नहीं बनता जितना तूने बना दिया है, और दोस्त लोग कहते हैं कि भाई ये रेसिपी है या कोई केमिकल लोचा, रंग तो एकदम जहरीला लग रहा है, तो ये शो आपके लिए ही है। और भैया क्या आपकी किचन में भी खाना बनाते टाइम कढ़ाई से तेल उछलकर दीवार या फर्श पर गिरता है, तो आप सही जगह पे आए हैं। तो आइए रेडियो रेस्टोरेंट की खिड़की खोलते हैं।
1: की खुली जरा, जरा पर्दा सरक गया।
0: अरे साहब, मैंने खिड़की क्या खोली, सब्जी वाले ने आवाज लगानी शुरू कर दी, आलू ले लो, बैंगन ले लो, गोभी ले लो। मैं जाकर कुछ सब्जियां ले आता हूँ, तब तक आप सुनिए ढिचक्या हूँ वाले गाने। बस चिपके रहिए FM सन सिटी के साथ और सुनते रहिए FM सन सिटी जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पथरी, प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर

0: दीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरण जीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: आप सुन रहे हैं FM सन सिटी।

0: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
1: भाई साहब, लोग कहते हैं कि हम जलेबी सीधी नहीं बना पाते। अरे भैया, हम तो वो कलाकार हैं जो टेढ़ेपन में भी मिठास भर देते हैं, वरना सीधी तो दुनिया में सिर्फ उंगली होती है और वो भी घी निकालने के लिए टेढ़ी करनी पड़ती है। आप सुन रहे हैं फूड लवर का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट, आपके दीवाने दोस्त बलवीर के साथ। मैं हूँ छोरा जोधपुर का, और भैया जब मैं हूँ आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भाई साहब, सुबह सुबह अलार्म चाहे कितनी ही बार बज ले पर चादर तान कर हम सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही रसोई से वो शुद्ध देसी घी के पिघलने की सरसराहट आती है और उसमें असली हींग का तड़का जब महकता है ना, तो बॉस भूख उसी सेकंड काबू से बाहर हो जाती है और नींद तो क्या, इंसान की आत्मा तक जाग जाती है। और जो भाई साहब रात को कसम खाकर सोए थे ना कि कल मैं सिर्फ सलाद खाऊंगा, डाइटिंग करूंगा, वो भी सुबह सुबह किचन के चक्कर ऐसे काट रहे होते हैं जैसे मंदिर के बाहर परिक्रमा चल रही होती है। सच कहूं तो साहेब, हमारे घर की किचन कोई साधारण सा कमरा नहीं है, वो तो अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, दुनिया की सबसे जादुई जगह। और उस जादूगरी के उस्ताद होते हैं हमारे घर के बुजुर्ग, हमारी नारी शक्ति, हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी बहन, हमारी भाभी और हमारी श्रीमती जी। और भैया, जब ये रसोई में होती है ना, तो गुस्सा, प्यार, सब्र और तजुर्बा सब एक ही कढ़ाई में पकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं के साथ रसोई में जादू जगाते हैं। जनाब, जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें हमारे घर की रसोई से ही मिलते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए। अब आप सुबह की कड़क चाय को ही ध्यान से देख लो, जब तक चाय पत्ती उबलते हुए पानी में पूरी तरह खौलती नहीं तब तक वो अपना रंग और खुशबू नहीं छोड़ती है। और हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है साहेब, जब मुश्किलें हमें चारों तरफ से घेर कर तपाती है ना, तो हमें घबराना नहीं है, वो असल में हमारी असली हुनर को और हमारे कड़कपन को बाहर निकालने का एक जादुई तरीका है। और अब इसी रसोई में कुछ हाथ से भी बड़े मजेदार होते हैं और वो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाते हैं। रसोई में भैया एक यूनिवर्सल नियम है, रायता आप कितनी ही सावधानी से बनाओ वो थोड़ा बहुत फैलता जरूर है। और हमारी जिंदगी का भी यही हाल है, आप कितनी ही प्लानिंग कर लो, हफ्ते में एक दो बार तो लाइफ का रायता फैल ही जाता है। कभी हमारे ऑफिस का काम बिगड़ जाता है, तो कभी हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी कुछ। बट समझदारी इसी में है कि आप फैले हुए रायते पर मातम मनाने की बजाय उसमें थोड़ा सा गुनगुना जीरा हुआ, भुना हुआ जीरा डालें, काला नमक डालें और उसको स्वाद में बदल कर मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, स्माइल के साथ। आखिरकार भैया, रायता भी तो जिंदगी को चटपटा बनाता है, इसलिए

इसलिए रुकना नहीं है हमें, तो मुस्कुरा के आगे बढ़ना है। रायते में जो है जीरा और काला नमक डालकर जिंदगी का जो रायता फैला है उसको स्वाद में बदलकर आगे बढ़ जाना है, मुस्कुराकर, स्माइल के साथ। और भैया, जो लोग कढ़ाई की धीमी आंच को बेकार समझते हैं उन्हें बता दूं कि रसोई का एक जादू सब्र भी है। जितनी धीमी

आँच होगी, कचौरी उतनी ही खस्ता और आलू की सब्जी उतनी ही लाजवाब बनेगी। पर आज की भागम भाग में हम फास्ट फूड की तरह जल्दी में है। बस थोड़ा सा ठहरिए, लाइफ को धीमी आंच पर पकने दीजिए, रिश्तों का स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो मेरे जोधपुर वासियों, जब तक जरूरत ना हो डाइट की किताब को अलमारी में बंद करो। रसोई से आती जो हींग और घी की खुशबू है उसका आनंद लो। अगर ये खुशबू घर के किचन से आ रही है तो अपनी प्लेट को तैयार रखो, और अगर पड़ोस के घर से आ रही है तो शर्माइए मत, ना ना, अपनी कटोरी उठाइए और सीधे उनके घर की डोरबेल बजा दीजिए, टिंग टोंग। अब भूख को कड़क रखिए, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ आपके पसंद के गाने। तो बस बने रहें FM Sun City के संग और सुनते रहें जोधपुर के छोरे बलवीर को।

0: dudes.
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
0: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रा सुख एक तरफ।
3: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं FM Sun City

0: चक दे फट्टे, ये एफएम सन सिटी है और इसका जादू सर चढ़कर बोलता है।
1: एफएम सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
0: भाई साहब, मैंने किचन में बस एक ही बात सीखी है, प्याज काटते टाइम रोना और चाय उबालते वक्त भागना निश्चित है। खम्मागणी हुकुम, एफएम सन सिटी पर फूड लवर का चटपटा मसालेदार शो रेडियो रेस्टोरेंट आप सुन रहे हैं बलवीर के साथ। मैं हूं छोरा जोधपुर का, और भैया जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भैया, शादीशुदा लोगों का एक ही सवाल होता है कि किचन में आपकी पोस्ट कौन सी है, चीफ शेफ या हेल्पर या फिर हाँ जी ला रहा हूँ वाले की पोस्ट होती है। भैया मेरी पोस्ट तो एक्सपेरिमेंटल फील्ड की है, हर बार कुछ नया ट्राई करने को जाता हूँ तो घर वाले कहते हैं भाई तू तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दे। क्या आप भी मेरी वाली पोस्ट रखते हैं तो टेंशन नको लेने का, आज मैं लेकर आया हूँ इन्हीं ऑनलाइन खर्चों को बचाने के लिए फनी किचन हैक्स, जो आपके खर्चों में सेविंग तो करें और चेहरे पे आपके स्माइल भी लेकर आएंगे। जब किचन में सब कुछ जलता है ना, तब हमारा दिमाग चलता है। चलिए शुरू करते हैं।
2: शुरू हो जा। 1, 2।
0: भैया, हमारे मोबाइल में ऑनलाइन फूड एप्स के नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं जैसे वो हमारे सगे फूफाजी हो, हमें सब कुछ फ्री में दे देंगे पर देते नहीं हैं। पिज्जा आपका इंतजार कर रहा है, बिरयानी के आपको 50% छूट हम दे रहे हैं, और ये देखते ही हम पिघल जाते हैं, और जब मंथ के लास्ट में हम बैंक बैलेंस देखते हैं तो दिल कहता है

तो भैया जेब खाली होने से बचानी है तो सुनो ये पहला हैक। जब आप महंगी सब्जी ऑनलाइन, मलाई कोफ्ता या कढ़ाई पनीर वगैरह आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कुछ ज्यादा ही पेमेंट करना पड़ता है ना। तो भैया जब घर में ग्रेवी बनाओ तो काजू बादाम मंगवाने की जरूरत नहीं है, इस पर खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। बस रात की बची हुई दाल जो है अरहर की दाल, दो चम्मच आप मिक्सी में डालकर टमाटर और प्याज के साथ पीस दो। ऐसी गाढ़ी और क्रीमी ग्रेवी बनेगी कि फाइव स्टार के होटल भी, वहाँ के जो शेफ हैं वो भी आपके पास ट्रेनिंग लेने के आएंगे और घर वालों को पता ही नहीं चलेगा।

0: लेगा कि वो दाल खा रहे हैं या शाही पनीर।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
0: अब बात करते हैं पिज्जा लवर की। ऑनलाइन हम पिज्जा मंगाते हैं तो आते आते इतना ठंडा हो जाता है कि पिज्जा का भूत सर से उतर ही जाता है, खाने का मन ही नहीं करता। अब हैक सुनो, बाजार से पिज्जा का बेस मिलता है, आप वो ले आओ या फिर घर की जो सादी रोटी है उस पर सॉस और चीज डालो, उस पर वेजिटेबल डालो और उसे तवे पे डाल दो और उसके ऊपर एक बड़ा सा पतीला या स्टील का कोई कटोरा उल्टा ढक दो। वो कटोरा ओवन की तरह काम करेगा, चीज ऐसी पिघलेगी कि धूप में आइसक्रीम, और जब चीज की लेयर खींचेगी तब आप कहेंगे
2: ये चांद

0: भाई साहब ऑनलाइन फ्रेंच फ्राई मंगवाओ तो वो घर पर पहुंचते पहुंचते इतनी लूज और गीली हो जाती है जैसे बारिश में भीगा हुआ बेचारा कोई उदास कौवा। घर पे क्रिस्पी फ्राइज चाहिए तो ये हैक सुनो। भाई साहब आलू को काटो, ठंडे पानी में धो और उन्हें सुखाने के लिए धूप का इंतजार मत करो। अपनी श्रीमती जी का हेयर ड्रायर चुरा लो और उन कटे हुए आलू पर हॉट एयर मारो। आलू का सारा मॉइस्चराइजर सेकेंड्स में गायब। जब आप तेल में तलेंगे तो कसम से इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आवाज आएगी खाते समय कुर्र कुर्र और आप गाएंगे
1: बल, बल,
0: तो भैया आज इन ऐप्स को करें अनइंस्टॉल और बन जाओ अपने किचन के बाहुबली। वैसे भी पैसे तो बचेंगे साथ में सेहत भी। अभी झकास वाले गाने मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, बस टिके रहें एफएम सनसिटी पर और सुनते रहें जोधपुर के छोरे बलवीर को।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
3: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

भाई साहब, हम तो इश्क को जानते हैं, उसे पहचानते हैं, तभी तो आप सबके साथ हमारा रिश्ता है ध्वनि तरंगों के जरिए। भाई साहब, पेट भरने के लिए रोटी ही काफी है और खुश रहने के लिए थाली में थोड़ा प्यार और स्वाद जरूरी है, और उस स्वाद के चक्कर में जो पेट बाहर आएगा उसे अंदर करने के लिए वर्जिश करना भी जरूरी है। इसलिए टेंशन हो तो उसे गर्म कढ़ाई में डीप फ्राई कीजिए और ऊपर से चाट मसाला डालकर कूट डालिए और फिर सिंक में बर्तनों के साथ धो डालिए। मेरी दादी कहती है कि बेटा, मसाले कभी भी नाप तोल के मत डाला कर, क्योंकि खाने वाले का पेट तो भर जाएगा पर उसकी नीयत हमेशा भूखी ही रहेगी। और आज जब मैं नाप तोल के खाना बनाता हूँ ना, तो तड़का भी हंसता है और कहता है, भाई खाना बना रहा है या कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है? तो साहेब, अब वक्त हो गया है एप्रिन को उतार कर साइड में रखने का और सिंक में रखे बर्तनों को देख कर भागने का, क्योंकि भूख के मारे मेरी आवाज़ पेट से नहीं, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है, और मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं

0: गा रहे हैं।
1: शुरू हो जा।
0: अब तो खत्म होने का टाइम आ गया है और अभी करता हूँ मैं रेडियो रेस्टोरेंट का शटर डाउन। पर आप दिल का शटर कभी भी डाउन मत करिएगा, वरना आपकी फीलिंग का रायता फैल जाएगा और उसे समेटने कोई नहीं आएगा। और हाँ, एक बात और, जोधपुर के हलवाई ने कहा है कि दिल और कढ़ाई दोनों हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि छोटी कढ़ाई में सब्जी जलती है और छोटे दिल में बात। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए एपिसोड में, नई बातों, नई कहानी और नए बहानों के साथ। तब तक जिम के सपने देखते रहिए, छक्कर खाते रहिए और डाइटिंग को कल पर टालते रहिए। जोधपुर का छोरा कहता है आपको सायोनारा।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस

0: पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा यादों की महफिल।
2: गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है, तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने। देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3।

0: मुझे बड़ी मजेदार बातें करती हैं और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियां भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियां ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: कलाकार फिल्म का गीत आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में. इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत.
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली.

0: में
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
0: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर. मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत.

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

एक था दिल एक थी धड़कन, इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और आनंद राज आनंद और सुरेंद्र सोढ़ी का संगीत।

कि कार्यक्रम का समय हो चला है, फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गईं। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहां आई किस लिए हैं, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम

साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना? मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत है उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की।
0: अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

हम तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज़ है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाज़ें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए, कुछ जो टिप्पणियां आई हैं हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां कर रही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहां दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहां आंखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियां हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल, सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बात

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

समाज में निदान ले लेर कई तरह री भ्रांतियां है और वह भ्रांतियां ने दूर करने री बहुत ज्यादा जरूरत है कि मरने रे बाद भी आप नेत्र बैंक रे माध्यम सु मृतक ने जो है आंख्या रुदान देर और वीने और वीरे परिवार ने एक नई जिंदगी दे सको हो।

आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर। जीवन में कुछ दान ऐसा हुआ जिना मूल्य है जिसको शब्द में नहीं आंके जावे और वह है नेत्रदान। वो एक ऐसा उपहार है जिसको कोई अंधकार ने दूर कर प्रकाश से ओर ले जावे। विश्व नेत्रदान दिवस पर आज इन विशेष कार्यक्रम में आज आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में खास मेहमान है जिका पधारी है जहाँ सो नेत्रदान से संबंधित बहुत सारी जानकारियां है जिकी ले वाला। तो आज रा मेहमान है आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान जोधपुर चैप्टर रा अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी। सर आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में आप रोघने मान सु स्वागत है।

0: राजेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं ने बताओ कि आप और आपकी संस्था जो है कि इनरी शुरुआत की कर हुई, आप इसु की कर जुड़िया?
1: ये जो संस्था जो है, राजस्थान सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर एमएल मेहता साहब, उन्होंने 2002 में इसको शुरू किया और धीरे धीरे उनके डेथ के बाद में पीछे जो जिन लोग जो लोग काम देखते हैं, अभी इसके अध्यक्ष हैं बीएल शर्मा जी, आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के, वो इस सेवा को देख रहे हैं और उनके साथ सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और मैं जोधपुर चैप्टर को देखता हूँ। उनकी प्रेरणा से मैं इस सेवा में आया और शुरू में मैंने लाइन्स क्लब के माध्यम से ये सेवा करनी शुरू करी। करीब 14 महीने लाइन्स क्लब के माध्यम से किया और उसके एक साल बाद में इंडिपेंडेंटली ये सेवा करनी हमने शुरू करी।
2: तो सर, राजस्थान में जहाँ वर्तमान देखकर आप बात करा तो इन समय नेत्रदान की जी स्थिति है बाकी है, कहीं इर प्रति लोग जिका है जागरूकता मतलब बढ़ोतरी हुई है?
1: आंख जो है मानव जीवन में इन विशेष महत्व है। आंख केवल देखने का ही माध्यम नहीं है बल्कि वे हमें संसार की सुंदरता, प्रकृति के रंग और प्रियजनों के चेहरे देखने का अवसर प्रदान करती है।
2: जी।
1: जिस व्यक्ति को दृष्टि चली जाती है उसके लिए जीवन अनेक कठिनाइयों से भर जाता है। ऐसे में नेत्रदान एक ऐसा महान कार्य है जो किसी अंधे व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ला सकता है, इसी कारण नेत्रदान को महादान कहा जाता है। नेत्रदान का अर्थ मृत्यु के बाद अपनी आंखों के उपयोगी भाग, विशेषकर आंखों में जो कॉर्निया होता है जो नेत्र गोलक का पारदर्शी हिस्सा है, को दान करना है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति को नेत्र लगाई जा सके और उसको रोशनी मिल सके। यह दान केवल मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। जीवित अवस्था में कानूनन न तो आंख ली जा सकती है न दी जा सकती है, कानूनन इसको बेचना और खरीदना भी अपराध है।
0: तो मतलब आप बताए जी अभी महादान है तो लोग इनरे बारे में इतना जागरूक है कि मतलब वाने ध्यान है कि आप मृत्यु रे बाद जो है नेत्रदान वाने की कर करनो है? कितनी जानकारी आपने लागे कि वर्तमान में राजस्थान में लोगों ने है इन बारे में?
1: अभी भी लोगों को भ्रांति है कि हम पूरी आंख निकालते हैं और चेहरा विकृत हो जाता है, डेड बॉडी का चेहरा विकृत हो जाता है, खून आता है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए और सभी हमारे सुनने वाले बंधुओं के लिए जो इस समय सुन रहे हैं, केवल आंख का जो काला कोया है उसके ऊपर से कॉर्निया निकाला जाता है जो कि चमड़ी से भी पतला, अपनी स्किन जो है उसे भी पतला होता है और केवल वो निकाला जाता है, उसी रेडियस का निकाला जाता है, उसे केवल 2 mm बड़ा निकाला जाता है ताकि उसको हम लेबोरेटरी में पूरा सही कर सकें और उसी से दृष्टि बनती है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस उससे खत्म हो सकती है। और अभी भी ये भ्रांति है गाँव में कि इनो इलाज को नहीं रहे और कटे जान इलाज कराओ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग कभी भी दिखना बंद हो जाए तो शहर में जाइए, जो भी आपके पास है बड़ा शहर है वहाँ जाइए, वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाइए और ये भ्रांति आप मन से निकालिए कि इसका इलाज नहीं है। आज की दुनिया में हर बीमारी का इलाज संभव है।

0: जी हाँ सर, अभी आप बोला कि भाई नेत्रदान जिको है मृत्यु रे बाद करे जावे, तो जिको दान करा जी कोई अगर व्यक्ति आपने आंख दान करने चाहे तो भी मृत्यु रे कितने समय तक आप भी रे मतलब नेत्र जिको है ले सका, और ये कई प्रक्रिया जी की है वह होया करे।
1: यूजुअली नेत्रदान जो 6 से 8 घंटे के भीतर लिया जाता है, हमें किसी की डेथ हो जाए तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करने के पहले आंखें अगर खुली हो तो आंखें बंद कर दी जानी चाहिए। आंखें बंद करके उसके ऊपर गीली कॉटन रख दें, गीली कॉटन के ऊपर फ्रिज में से एक एक आइस क्यूब निकाल के कॉटन के ऊपर रख दें, उससे आंखों में नमी बनी रहती है। सिर के नीचे तकिया लगा लें और पंखा चला पंखा बंद कर दें, और एसी अगर हो तो एसी ऑन कर दें, इससे अच्छी रोशनी बनेगी, कॉर्निया अच्छा काम आएगा और कॉर्निया काम आने की संभावना ज्यादा अच्छी रहती है।
0: तो एडे वास्ते कोई पंजीकरण कराना पड़े पहली, या मतलब हाथों हाथ भी कोई परिवार वाला जो है जहाँ कोई री मृत्यु हुई है और उन टाइम ही अगर नेत्रदान करवाना चाहे तो वो भी कर सके।
1: कोई व्यक्ति इसके लिए अपना पंजीकरण कराना चाहता है तो पंजीकरण करवा सकते हैं आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के माध्यम से। उसके लिए भी हम ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था हमने कर रखी है, और वापस उनको सर्टिफिकेट भी वो डाउनलोड किया जा सकता है, उनको वो कर सकते हैं, वो खुद सक्षम है कर सकते हैं। इसके अलावा पंजीकरण नहीं भी किया हुआ हो तो और पंजीकरण किया हुआ हो तो भी परिवार की सहमति के बिना हम कॉर्निया नहीं ले सकते, आंखों से कॉर्निया नहीं निकाला जा सकता, परिवार की सहमति इसमें आवश्यक होती है। कोई भी हमें जब से इन्फॉर्म करेगा तो हम सबसे पहले प्रश्न यही करते हैं, भाई आप लोगों की सबकी सहमति है तभी हम कॉर्निया ले पाते हैं।
0: तो सर जी हाँ, अभी आप बोले कि आंखें दान करी जाए, तो कौन कौन सा व्यक्ति जी का है वे आंखें दान कर सके हैं?
1: 2 साल कॉर्निया डेवलप होने में लगते हैं पूरे बच्चे के, 2 साल से लेके ऊपर तक किसी की भी कोई एज लिमिट नहीं है, 100 साल का व्यक्ति भी आई डोनेशन कर सकता है। इसमें लोगों को भ्रांति है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो आई डोनेशन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, उनके भी आई डोनेशन हो सकते हैं। लेकिन कॉर्निया तभी हम लेते हैं जब हमें ये लगे कि ये काम का है, जिससे वापस दृष्टि बन सकती है, तभी हम कॉर्निया लेते हैं।
0: जी कोई रे अगर पहले कोई मोतियाबिंद हुए लेकिन बाद में अगर आंखियां ठीक हुई है तो वह भी कर सके है नेत्रदान?
1: मोतियाबिंद वाला भी कर सके। मैं बीच में आपने एक चीज और बताऊंगा कि हमारा मानो एक टोल फ्री नंबर है, वो आप लोग नोट करें, टोल फ्री नंबर है 1-800-889-1-651। मैं इन्हें रिपीट करूं ताकि आप इन्हें राइट डाउन भी कर सको, लिख भी सको, 1-800-889-1-651 ए टोल फ्री नंबर है। इन नंबर मात्र 24 घंटा कड़े भी आप फोन कर सको, और रात 2 बजे भी फोन करो तो आप हमारी सेवा उपलब्ध मिलेगा।
0: तो मतलब आप यहाँ बतायो कि मतलब कोई भी जो है नेत्रदान कर सके, पर इनो नेत्रदान पहले तो आप की कर जांचो कि मतलब कॉर्निया है जो को सही है या आप इन्हें काम में ले सका, तो इन वास्ते कोई जांच भी होया करे आखिरी?
1: जना आप कॉल करो ला तो माना टेक्निकल पर्सन जो है माना एम्प्लॉइज है वे लोग जावेला, मानी उपलब्धता नहीं वेला तो डॉक्टर्स जावेला वे देखेला, अगर काम नहीं वेला तो ये आंख लिया करो, अदरवाइज नहीं लिया करो, और फिर वापस जिक्र करो पूरी आंख नहीं निकाला खाली कॉर्निया निकाला, उनमें कटे खून नहीं आवे, कटे चेहरों विकृत नहीं हुए और कटे भी बॉडी ने कोई भी इफेक्ट नहीं आवे।

0: तो कोई अगर जहाँ दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो विण समय भी कोई अगर नेत्रदान अगर करना चाहे तो संभव है?
1: दुर्घटना तो मैंने जी का ऑलमोस्ट 99% यंगस्टर्स की डेथ होया करे, जो बाइक ध्यान नहीं चला हुआ है या कोई और छोटी मोटी कैजुअलिटी हो जाए, लेडीज हो तो वहाँ कोई ऑपरेशन हुए उन टाइम सक्सेस नहीं हुए वहाँ डेथ हो जाए, तो वहाँ कौन ही कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़िया हुआ है, यंगस्टर्स का कौन ही ज़्यादा अच्छा हुआ है और उन अच्छी रोशनी बढ़िया करे।
0: तो कौन कौन सा व्यक्ति जिका है वे नेत्रदान कौन नहीं कर सके?
1: नेत्रदान जिन्हें कोई एड्स जोड़ा है, हेपेटाइटिस बी और सी है, जिन्हें रेबीज की प्रॉब्लम है, सेप्टिसीमिया, ल्यूकोमिया, जॉन्डिस, इन तरह की बीमारियां जिकी है, उन जैसे संक्रमित कोई भी रोग है वह लोग नेत्रदान नहीं कर पावे, उन्हें अलग सब लोग नेत्रदान कर सके, जिन्हें मोतियाबिंद ऑपरेशन से जोड़ा है वे भी नेत्रदान कर सके, जिन्हें नजर और चश्मा लाग रही है तो वे भी नेत्रदान कर सके, जिन्हें हाइपरटेंशन है, बीपी है, डायबिटीज है और या कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, सांस की बीमारी है, वे लोग भी नेत्रदान कर सके। आप ही जानकारी वास्ते कि कैंसर पेशेंट का जिकनी प्राइमरी स्टेज है वहां भी नेत्र लिया जा सके।
0: जी बहुत बढ़िया। तो गांव रे क्षेत्र में आपने देखा जी आजकल शहर रे माए तो आजकल फिर भी इंड रे बारे में बहुत जागरूकता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में अब और भी थोड़ी जो है लोगों में कई तरह का संकोच इरे वास्ते देखा जावे, कई तरह की भ्रांतियां भी है, तो आपने कई लगे कि गांव में क्यों आज भी जो है इंड रे बारे में इतनी जागरूकता नहीं है, किन तरीके रा संकोच है वह लोगों में देखने मिले नेत्रदान रे प्रति?
1: आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान का प्रयास है कि पूरा राजस्थान में अंधत्व मिटावे और अंधत्व तक जरूर मिट सके, कि गांवों में भी आज जागृति आवे कि वे नेत्रदान करें। जागृति शुरू हुई है धीरे धीरे, आई बैंक का प्रयास है कि आप सब साथ है, आप सब हमारे सहयोग हो और अंधत्व निवारण करा, और मैं लोग गाँव में जा जाने भी कई जगह चर्चा करा, कटी सत्संग में थोड़े जाने भी बात करा,

0: महाराज के थ्रू भी बात समझाने की कोशिश करा। जहां जहां कथाएं कथाएं चलती है वहां भी हम जाते हैं और वहां भी साधु संतों के सानिध्य में इस तरह से चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को ये बात समझ में आए और उनको महाराज लोग भी सेकंड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम जब किसी की गांव वाले व्यक्ति की देहांत हो जाता है और हम मोर्ची पे जब उनको मोटिवेट करते हैं और वो जब मोटिवेट हो जाते हैं तो हम की आइडोनिसिस लेते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर के भी हम उनके जब टीए की बैठक होती है या 12वीं की बैठक होती है तो हम लोग जाकर के दृष्टिदाता सम्मान पत्र उनको भेंट करते हैं पब्लिक में। वहाँ उस समय 800,000 की ऑडियंस भी होती है, वहाँ पे हम वहाँ जाकर के चर्चा भी करते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करा, मारवाड़ी में बात करने समझाने की कोशिश करा और उन्हें लोग अप्रिशिएट भी करें, लेकिन रिजल्ट हाल उतना नहीं मिल पा रहा है अपन ने मिलना चाहिए।
1: क्यों? क्योंकि हमारे मन में कई तरह की चीजें होया करें नहीं,
0: भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां इन तरह है कि मैं अगर आंख दे वाला तो अंधा पैदा वाला।
1: अच्छा,
0: तो इन तरह मैं लोगों ने प्रश्न भी करने वास्ते उत्साहित करूं कि आपको कोई भी समझ में नहीं आता तो आप प्रश्न करिए, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो उसका रिप्लाई भी करता हूँ। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा सभी को कि अपना जीवित अवस्था रामायण कबूतर ने धान देवा, गाय ने रोटी देवा, गरीब ने पैसा देवा और भी अपना दान पुण्य करा, कपड़ा देवा, ऐसा सब क्यों करना? अपन अगला जन्म, अगला जन्म सुधरे, अगला जमावा सुधरे, इन्हें सुधारण वास्ते अगर ऐसा सब करा तो अपन गया पछे जिकी की अपनी आंख राख हो जानी है या मिट्टी में मिल जानी है तो अपन उन्हें डोनेट करनी चाहिए ताकि अपन गया पछे भी एक व्यक्ति रे दो आंखें, दो जन रोशनी मिला और उन्हों वो व्यक्ति देख ला और वे आशीष देवला कि आप 100 बार इस पृथ्वी माता जन्म लेला और आपने 100 बार आपने 6x6 से आंख मिलेला, दृष्टि बहुत अच्छी देवला, एडो अपनी सब सोच बनानी है। निश्चित रूप अगर अपनी सोच बनावाला तो वेस्टर्न रास्ता में तो निश्चित रूप अंदर तो मिटमना सफल हो पावाला।
1: बिल्कुल जी हाँ, अब आप बात करी कि भी गांव में महिलाएं भी होया कर तो महिला और मां ज्यादा मतलब के बने कि अंधविश्वास रे बातें होया करे तो एक महिला जी की है बा किन प्रकार आपरी भूमिका है जी की निभा सके नेत्रदान रे अंदर किन तरह बा जागरूकता जी की है वा बढ़ा सके इन वास्ते बा कहीं कहीं करना चाहिए बिने।
0: महिलाएं तो बहुत सक्षम है, अगर महिला अड़ जावे कि नहीं मारे तो नेत्रदान कराना है तो वाणा घर वाला कोई भी कुछ भी कदक नहीं करना तो वाणी बात नहीं चल है। महिला हट जावा तो सक्षम हो जाए, वे लोग मोटिवेट हो जावे नेत्रदान करने वास्ते, इन अच्छी कोई बात नहीं हो सके वाणा मोटिवेट करने वास्ते। आप जरा समाज सेवी लोग और शिक्षित लोग वाणे जाने मोटिवेट करें और मानव सहयोग जद कभी भी आपने चाहिए आप माने कॉल कर सको। मैं जैसे आपने टोल फ्री नंबर दिया वापस आप नोट करो 1-800-889-1651 इधर माता कॉल करो। आप जब तक कभी चावला इन सेवा वास्ते 24 घंटा आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान उपलब्ध है। मैं लोग आना समझावाला, कोशिश करूंगा कि वह इन चीज ने और अच्छे तो समझ लें और दूसरी महिलाओं ने भी जागरूक करें।
1: बिल्कुल, अगर एक महिला अड़ जावे और एक महिला अगर आ जान जावे तो वह पूरे परिवार ने भी जो है वह मतलब प्रेरित करेला इन काम वास्ते
0: निश्चित रूप से।
1: तो नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया जो है वो कौन कौन से लोगों के वास्ते उपयोगी हो सके है और आपने कहीं लगे कि मतलब कौन सा लोग है जका वे इसु लाभान्वित हो सके हमारे जीवन में बदलाव है जको आ सके है।
0: बदलाव की बात आप करी, अगर किसी व्यक्ति रे कॉर्निया लाग जावे तो उन्हें तो दिखना शुरू हो गए उन्हें सारा परिवार मतलब जो बर्डन बढ़ चुको है बिना देखियो वो बर्डन हट जावे, समाज में तो भी एक बर्डन हट है तो कॉर्निया लाग गया तो फायदा हुआ है। लेकिन कॉर्निया कैसे कलेक्ट किया जाए उन्हें वास्ते अपन लोगों ने सभा में जागृति करानी पड़ी और बस मिलने इन काम ने कर सका। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान इन वास्ते आप क्यों जड़े जट चाह उठे आपकी सेवा दे उन्हें तैयार।
1: तो मतलब कॉर्निया जो है अपा कोई भी व्यक्ति रे लगा सका, मतलब जन्म सु भी अंधो है तो भी या कोई हादसे में आंखें गई उड़ी है वीरे भी
0: जन्म सु अंधा।

0: लगता है वे रेटिना ब्लाइंड्स के लायक है ऑलमोस्ट, वाणे कोर्निया नहीं लगे और कोर्निया लगे वो दृष्टि नहीं बने. लेकिन जिका तो जन्मजात अंधा है वाणे भी कोर्निया तो हो ही जाए आंख में, वे भी आपकी मृत्यु के पीछे आंखें डोनेट कर सके.
1: अच्छा.
0: और वे कोर्निया अगर डोनेट करी हो तो वाणी आंखें वे तो नहीं देख पाया, लेकिन वाणी कोर्निया दूजा दो लोग देख पावेला, इन बढ़िया कोई बात नहीं हो सके.
1: बिल्कुल.

0: प्रयास करें हॉस्पिटल तक पहुंचाना, तो निश्चित रूप को डॉक्टर साहब बताया कि आप बड़ा शहर में जाओ और उनके प्रयास करो ताकि आपने कॉर्निया लगा सके और निखना शुरू हो जाए।
1: तो सर कोई आप जीवन में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी याद है आपने कोई कहानी जो कोई बिस्सू आपने बहुत कभी ना एक प्रेरणा मिली है लोगों ने आप आगे कोई ऐसी घटना हुई?
0: मैं एक बार जोधपुर बॉम्बे जा रही सॉरी बॉम्बे जोधपुर आ रही हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ और हमारे साथ एक बच्चा और एक और भी व्यक्ति ट्रेवल कर रहे, डिब्बे में सब होते ही है, ट्रेवल कर रहा है। वो बच्चा एटलीस्ट 12-13 साल का और उन पेरेंट्स उन्हें बता दिया कि भाई अठे वो देखो घोड़ा है आ गए है वो पेड़ है, तो मैं परेशान हुआ। कई बातें को 12 साल का बच्चा इन सब चीजें नहीं समझ पा रही है। काफी देर तक मैं उत्सुक भी रहा, बाद में बार बार उन्हें लोग समझाता तो मैं परेशान हो गया कि क्यों परेशान कर सब ने डिब्बा में बैठा दिखाना। तो मैं वहां प्रश्न किया उन्हें बच्चा के पेरेंट्स को, वो 12 साल का बच्चा है और मेंटली रिटार्डेड भी नहीं लगे। मैं उन्होंने बात भी करी तो वो मेंटली रिटार्डेड भी नहीं हो, तो मैं उन्होंने पूछे थे 12 साल का बच्चा आप इतनी समझा रही हो, तो कई बात है जैसे मैं अबार हैदराबाद हूँ बॉम्बे आया ना बॉम्बे जोधपुर जा रही हूँ और इन्हें बॉम्बे मारवाड़ जा रही हूँ और इन्हें कॉर्निया लगाना है आँख लगाना है और इन्हें रोशनी अभी जाइए वो मान रहे जीवन में एक मोड़ आया। मैं शुरुआत में लाइफ सेवर माध्यम और शुरू करी और बाद में इंडिपेंडेंटली आई बैंक सोसाइटी और राजस्थान के माध्यम आज सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ।
1: जी कि तो अच्छा लगे जब पहली बार है जब वाने रोशनी मिले और वह हर एक चीज ने जो है पहली बार देखे तो वह खुशी एकदम अलग ही होया करे।
0: मैं आपने बताऊं जब कॉर्निया लगे कई बार मैं हॉस्पिटल जाऊं पेशेंट को मिलूं और उन्हें मैं बताऊं भाई कि कितनी अंगुली है, का एक है उनके बाद चार है जिन बताऊं मैं, तो मन तो खुशी है जिनको गए वो एक तो खुश हुआ कि आने गले मिले सर मार तो दिखना शुरू हो गया।
1: सही
0: तो आज अखबारों में भी देखे वाला कि औसत आयोड है आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है उन्होंने आते हैं तो बहुत अच्छा लगे
1: जी
0: मन में बहुत संतुष्टि है।
1: तो सर हाँ तो सर जी हाँ अगर आप बात करें नेत्रदान दी तो जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहे तो कोई आर्थिक रूप में खर्चो करना पड़े कोई कानूनी प्रक्रिया भी है जिसके भी पूरी करने पड़े भी परिवार ने
0: नेत्रदान के वास्ते एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। झड़े की कॉल आवाला मैं लोग जावाला मैं माने खर्चा मत रहा हूँ एक रुपया की निकलू नहीं लिया न एक रुपया की निकलू वापस जिन्हें कौन लगा वो रकम ले एक रुपया न तो आप डोनेशन करें जिकने कम लो न कोई वो जिको जिको आंख जिन्हें लागे वाले को कोई रुपया ले आओ कानून में ये सब अपराध है तो खरीदे जा सके न बेचे जा सके
1: लोग कंप्लीटली मतलब फ्री है
0: पूरा निशुल्क है।
1: तो देखो परिवार रे जब कोई सदस्य रो निधन व्यय करे तो उन टाइम भावनात्मक तौर से जो है परिवार बिल्कुल जो है हमारी भावना बिल्कुल अलग होया करे है विन टाइम वे बिल्कुल भी एड़ी स्थिति में नहीं व्यय करे है कि भाई नेत्रदान रे बारे में सोच सके वे न शरीर ने भी नहीं छोड़ना चाहे है तो इन टाइम में परिवार ने आप की कर प्रेरित करो हो नेत्रदान रे वास्ते
0: पड़ोसी तो पड़ोसी उनके अलावा रिश्तेदार अगर वे लोग जागरूक हो जाए जिन्हें अपा सब मिलने जागरूक कर सका अगर वे जागरूक हो जाए तो जिन्हें घर में देहांत वह किसन वह डेवलप जा रहा वह अगर उन्हें मोटिवेट करे कि भाई जाऊन वालों तो गयो करो इन आख्या दान करो कटे खून भी नहीं आए कटे चेहरा विकट भी नहीं हुआ और उन वजह से कि दो जगह दोस्त नहीं मिल जाए तो प्रयास करो तो वे मोटिवेट हो सके और जो तो आप पहले प्रश्न किया अगर महिलाओं चाहे तो बहुत ज्यादा इनमें अपन सफलता मिल सके।
1: और सर आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की तरफ से जागरूकता वास्ते और भी कोई अभियान है जगह चलाया जा रहा है इन वास्ते
0: मैं लोग इन वास्ते जैसे बार आपने बताया कि जैसे जैसे प्रवचन में उठे जावा साधु संत को भी मोटिवेट करने की कोशिश करा मैं खुद भी बोला और उनके अलावा कई कॉलेजेस में मैं जाने इन बारे में चर्चा करी है सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी जाने बात करी है टेलीफोन डिपार्टमेंट्स पुलिस विभाग में भी माने बराबर सहयोग मिल गया है।

और वो सत्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग सभी जिगर सोता हो वैसे भी इन्हें थोड़ा सा अगर आप प्रयास करो ला तो आप सब मिलना इन सेवा आगे बढ़ा सकला। और बहुत बड़ी बात नहीं पश्चिमी रास्ता में रास्ता में तो डेफिनेटली अंदर तो निवारण कर पाऊंगा।

0: बिल्कुल सर, तो आज जिको विश्व नेत्रदान दिवस है, तो इन अवसर पर आप सुनने वाला जितना भी श्रोता गण है, मैंने कई सलाह जी की देनी चाहूंगा।
1: जब दृष्टि व्यक्ति को नई रोशनी मिलती है, दिमाग में आप वो बोग निकाल दो कि नेत्रदान कोई चेहरों विकृत हुए कटी खून आवे। आज भी लाखों लोग अंदर थोड़ी समस्या जूझ रहा है, यदि अपा ज्यादा ज्यादा नेत्रदान करा ला, संकल्प लाला, तो अनेक दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को अपन बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: आप सभी, आपके गांवों में स्कूलें हैं, कॉलेजेज हैं, आप प्रिंसिपल से बात करें और हमें इंटीमेट

0: करें, वो जब चाहेंगे हम वहां आकर के उनको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। और मानव सेवा का सबसे बड़ा सेवा है और वो एक बड़ा दान है जिसको मृत्यु के बाद में भी किया जा सके।
1: बिल्कुल सर, आज देखो आप इतनी अच्छी अच्छी क्या है कि नेत्रदान से जुड़ोड़ी है जिका सुझाव दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, तो जितना भी श्रोता गण जिका है वे सुने हैं तो वो जरूर जरूर बयानों लाभ उठावेला। और आप टोल फ्री नंबर है वे भी आप बताया है, तो श्रोता जिका है टोल फ्री नंबर भी है जिका नोट करया है।
2: बिल्कुल, तो आंख्या फकत देखे ही नहीं पण मिनक पणे री कौणी भावनावा अपनायत भरोसो रीस लाज हेत प्रीतर ने भी ओळखे है, तो इन वास्ते ही नेत्रदान है विश्व बड़ो महादान हो ही नहीं सके। तो आज इन मौके पर आप इन स्टूडियो में पधारिया और नेत्रदान रे विषय में इतनी अच्छी जानकारी श्रोतावें दी, इन वास्ते राजेंद्र जी आपरो घणे मान आभार।
0: बहुत बहुत आभार आपरो का आपने बुलाया और इनो आपरे वजह से और लोग जुड़ेला। एक नेत्रदान वास्ते नारो बतू आपने, दान करो आंखा रा मोती अमर रहेगी जीवन ज्योति। आप आंखें दान कर लो अपनी आंखें अमर रहेगा और अपनी आंखें दो लोग और देखेगा।
1: धन्यवाद सर।

0: फरी।
1: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
0: हाँ, फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: तो शीतल जद आखरी बात करें तो देखो आंखें पर कितना सारा मुहावरा है जिका भी बन चुका है। देखो जहाँ की आंखें आंखें तारो होनो, आंखिया में धूल झोंकनो, आंखिया दिखावनी, आंखिया चार होनी, आंखिया रो पानी मर जानो।
7: बिल्कुल, आंखिया में खटकनो, आंखिया बिछानो, आंखिया फेर लेनो, आंखिया चुरानो, तो आंखिया में बस जानो। तो आंखिया री बात इतनी ज्यादा जो है करी गई है अपनी लोक संस्कृति में भी, लोक गीता में भी, अपनी खुद की बाता में भी। तो आंख जितनी सुंदर चीज हो ही नहीं सके और सुंदरता ने भी निहारणता ही अपने आंखिया ही चाहिए। आंखिया री देखभाल भी बहुत जरूरी है।
6: आंखिया नहीं वास्ते कमल नयन बोला गया है कि जो कमल कितना सुंदर है, तो आंखिया जिके मतलब कमल नयन, आंखिया पूरी कमल जिया है।
7: बिल्कुल, आंखिया आंखिया ने जो है कई तरह की उपमा दी जाया करे है, चाहे कमल सारू कहो जावे या क्या मृग नैनी भी कहया करे है। तो आरी देखभाल जो है वित्तीय और जरूरत जो है अपने है, ताकि आप जो ये सुंदर दुनिया ने है वह देख सका। इन वास्ते आखिरी देखभाल रे वास्ते अपने थोड़ा सो आजकल रे टाइम में स्क्रीन टाइम है जो को बहुत कम करना है, खासकर बच्चा री आंखें आजकल देखा छोटी सी उम्र में ही जो है रोशनी बहुत ज्यादा कम हो जाया करे, चश्मों लाग जाया करे और भी दूजी कई तरीके की समस्याएं जकी आ जाया करे आंखिया से जुड़ोड़ी। इन वास्ते जितो हो सके आप जो है स्क्रीन टाइम आजकल कम करो।
6: बिल्कुल, सागे सागे कहें कि मतलब जो भोजन करा वो भी पौष्टिक होना जरूरी है। अगर आप अच्छा भोजन करो ला तो अपने आंखें जिके वे अपने आप ही मतलब सुंदर और स्वस्थ रहेली।

0: मृत्यु के बाद यदि कोई किसी ने दुनिया ने रोशन कर सके तो आ सबसे बड़ी बात है। तो इन वास्ते नेत्रदान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्व नेत्रदान दिवस पर आज आप सगे ही दो सखियाँ शीतल राठौड़ आराधना जोशी कंसोल पर अपने फूटा फूटा गीत सुना रहे हैं राजेंद्र चौधरी। ट्रांसमिशन सहयोग रियो एसपीटी पर विक्रम सिंह भाटी फारूक अहमद शेख। कंट्रोल रूम सो अपने सागे हाँ गजेंद्र सिंह राठौड़। प्रस्तुति ही राजेश लामरोड
1: और संयोजन हो मनीष सोलंकी रो। तो आँख्या सु देखा रंग हजार आँखा सु जाना संसार जिन री आँख्या में उजास रवे ओरो जीवन खुशहाल रवे।
0: तो इन सागे ही सखियों लेवा से चाला राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी और एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है।
3: गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
4: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
3: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेख

0: उल्लेखनीय है।
1: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए वे सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
2: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
4: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
4: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण

0: भी जी राम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय

0: और आवासीय परिसरों से 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जमलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: इच्छा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना

0: दिल पे नहीं है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक वाइब होती है, एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
2: है ना? और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियाँ बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
2: विषय बता दे।
1: बिल्कुल,
2: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज नया, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। उसको तो अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
2: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
2: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
2: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
2: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है या संवाद पीछे छूटता जा रहा है
1: और किस तरह का संवाद होता है,
2: है ना?
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला

0: श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
1: उसमें हम चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना, और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
0: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
1: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना, तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है। तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए। यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी, जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें
0: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत बातें हो गई हैं
1: जी, सुनते हैं कि
0: ठीक।

0: तो नेहा, मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊं।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र है या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती है तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी
1: नहीं हो पाई
0: तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने

0: का कार्य है और
1: बिल्कुल
0: भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है। नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने. उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें. मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं. इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे. आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं. तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें.
1: सके. और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
0: देख
1: सकें.
0: सके
1: और जब भी
0: बिल्कुल
1: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां. और साड़ी में
0: साड़ियां
1: जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है.
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में. और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है. ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है. अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है.
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है. चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है. ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई. कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था.
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी. उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे. और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है. जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है.
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है. इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है. पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं.
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियां, साथ ही चंदेरी कॉटन. अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियां पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियां पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है. साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है. और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है. कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है.

0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं.
0: क्या बात है, क्या बात
1: मुझे
0: है.
1: शौक है तो पहनती हूँ. और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके. कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है. और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं. उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है.
0: क्या बात है. चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है. पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं. अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं. पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी. आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है. एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं.
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं. साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है.
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण है.
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले.
0: बिल्कुल.
1: तो सुनते हैं गीत.

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम,
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणी अक्सर असमंजस में पड़ जाती है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो

0: कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीट बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
0: उसे करेला भी दीजिए।
1: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हर आप जो खाते थोड़ी थोड़ी,
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
0: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ. कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है.
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए.
0: हाँ, तो घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ.
0: ना.
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है. सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है. देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया.
0: संवाद को.
1: वही.
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं. उसके पीछे है पैक्ड फूड. जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है.
0: जी.
1: सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना.
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं. उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं इसलिए.
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी, और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें, और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को.
1: सोनाली जी, मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब आप उन्हें चखाएंगे.
0: बिल्कुल.
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं.
0: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे.
1: हाँ,
0: और
1: तो
0: सहेली ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको. तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हदबल हो जाते हैं. वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा. घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतू, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है. छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है. घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं. क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है.
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछे मत. मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन. अब हम गृहणियों को बड़े ध्यान से खाना ना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है. एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं. कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं. क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं.
1: हाँ सच में. एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे. आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे. तो बिल्कुल सही कहा है.
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा. जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे. नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने.

0: तो कुछ खा ले, ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वह है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथ ही लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए। उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से। यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है, हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं। संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, दिल ना छोड़ो गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें

0: रोज वाली, अगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छीलकर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी पर हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8-10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है, बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भूनकर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे, मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले, अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले, अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च लहसुन हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं, और आप क्या करें।
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है. उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखे. स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा. और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें.
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है. बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में.
0: हाँ.
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: नहीं है.
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत. आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा।
1: जी, रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही जन्म जन्म।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं। बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
1: गजब,
2: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
1: जी।
2: तो, या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाई चिंतामणि और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
1: जी जी,
2: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी,
2: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं, तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध

0: की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं। तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा,
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई
1: संबंध
0: दूर
1: नहीं
0: से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा तो मैंने एक कहानी लिख दी, परी के वरदान।
1: जी,
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी, सर्वेश्वर लाल सक्सेना पराग के संपादक थे। मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
1: 3 पेज
0: और 3 पेज की चिट्ठी
1: सर्वेश्वर जी के पास।
0: हाँ, उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब लिख दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई। तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर।
0: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये

0: ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी, तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
1: जी जी,
0: वो एक गवैया बन जाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात
1: जी। तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।
0: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयन कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मेहनतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक बोलते हैं।
0: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई?

0: मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10 15 10 15 10 15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है, तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी। ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुनाइए।
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली। और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते भी जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी,
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी, आप अगर सुनाए हमारे तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता ये है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवा

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई, ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये
1: चीज।
0: में धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर
1: तो
0: रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं

0: तो रेंग नहीं उत्पन्न होता है,
1: अनकहा कुछ
0: अनकहा। तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
1: क्या बात है?
0: उदासी बाल खोले सो रही है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी।
1: जी जी।
0: तो हम
1: जी।
0: उनकी गजलें सुन रहे थे तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे
1: जी,
0: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
0: कैसे तो, कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या कहानी है?
0: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक
0: थे, तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से
1: जी,
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा। 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया।

0: मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूं कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ बिल्कुल,
0: इसका
1: तो
0: मतलब कि दूसरा आदमी
1: हाँ।
0: उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है,
1: जी जी,
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी हाँ। सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है,
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी
1: हाँ,
0: उनका आशीष था
1: जी
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
1: जी,
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या
0: में,
1: बात
0: हाँ।
1: है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी,
1: हुआ है,
0: 9 भाषाओं में अब तक
1: जिसमें
0: ये
1: मराठी में भी
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी।
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो बंद कमरे, अलोई,
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
1: जिंदगी
0: धूप
1: तुम घना साया, साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है,
0: हाँ।
1: तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है
0: हाँ।
1: इस बात से।

कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी।
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है, ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता है। तो वो कविताएं

0: मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना, और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं, और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20-30 ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
1: क्या बात है, अगर चार लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, तीन बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक मां, एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए, पान खाएं सैया हमार।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है?
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहां आपका बचपन
1: बीता। क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी, क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए पहुंचे? पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूं जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूं, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
1: नहीं, हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम
0: आए
1: लगाने आए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ सृजन करने आए हैं।
0: जी जी।

0: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत यह, मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?

0: पहली बार किस अखबार में गए, कैसे क्या थी सीढ़ियां?
1: देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा। लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में, मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
0: जी जी,
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गईं। तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली, गंगा यमुना, उसमें रविंद कालिया जी ने मुझे बुला के रखा।
0: मैं
1: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ, तो वो मैंने 3 साल काम किया। तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी। फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा, फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
0: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
1: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
0: जी।
1: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
0: जी।
1: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता। वो उसपे सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
0: जी।
1: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
0: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?
1: सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
0: बिल्कुल,
1: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद करनी है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: कविता माने कविता नहीं रही
0: जी, जी।
1: तो अगर कविता माने आपकी कविता है हाँ। तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
0: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
1: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। बहुत चीजें बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे

0: खोले हैं।
1: जी
0: अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: सही
0: तो आप
1: बात
0: वो
1: है।
0: जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

राम राम साथीरा, सिंजारी 5 बजगी है और इन टाइम आप सगड़ा ने उड़ीक रहा करे आपने दैनिक कार्यक्रम युवाणी री। पर आज है बुधवार और बुधवार दिन खास उड़ीक रहा करे आपने मायर भाषा रे कार्यक्रम निम्बोड़ी री। तो आज रो निम्बोड़ी कार्यक्रम लेन हाजिर हुई हूँ मैं आप रो दोस्त भोम सिंह। तो साथीरा इन 1 घंटे रे कार्यक्रम में आपसु घनी सारी बात कराला और आप री फरमाइशा ने कार्यक्रम में शामिल कराला। पर उनसु पहला कार्यक्रम री शुरुआत करा इन प्यारे से गीत लेरे सागे।

0: 133 एक बार फिर सुन ले रहा हो 94 133 29 359। इन नंबर माथे आप आपरो नाम पतो और आपरी फरमाइश रो गीत लिखन भेज सको। अब अपा फरमाइश रो सिलसिला शुरू करा। आप पहली फरमाइश आई है गोविंदपुरा सीकर सू भेजनवाड़ा है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रंकी शेखावत।
1: शादी का गाना है और हाजर उबारिश मैं लाल बनेनो जोश धीमेरा धीमेरा चालो थाना घनोड़ी खमा है।

तो सादरा इन एक घंटे रे कार्यक्रम में कोशिश कराला आप सगड़ा रिफरमाइश ने कार्यक्रम में शामिल करने री। अगर कोई नया रेडियो साथी जगह आप रिफरमाइश मार तक पहुंचानी चाहे तो आप मन व्हाट्सअप कर सको। मारा व्हाट्सअप नंबर है 94 100।

साथीरा फरमाइश जकी लगो लग आ रही है और आ फरमाइश आई है मेघवंशी नगर भादुकला जोधपुर सु भेजन ओढ़ा है दिनेश सोढ़ा देव्यांश रुद्राक्ष भव्यांश साक्षी रमनदीप निशा प्रिया और साक्षी अरुण और सगड़ो सोडा परिवार।

आप री फरमाइशनों देख लाग रही हो, आप लोग गीत बड़ा चाऊ सुन रहा हो। औखत आयो है भोपालगढ़ सू धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परियार। छोटी बलिया सू नूर आयदा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसमा, रबिया परी, आसू जूही, दफत बागवान। रोईचा कला लूणी सू जगदीश, दीपक, ज्योति, पूजा, सरिता, भावना और कार्तिक। औखत आयो है गांव टुकिया तहसील सिंधनी सू भूपत कुमार डाबी, कृष्णा कुमार, विक्रम, अर्चना, साक्षी, रणोरो सगड़ो डाबी परिवार।

0: औखत आयो है करमपुरा न्यू दिल्ली सु। भेजन वाला है अनिल, मानसी, कविता, गौरव और इनरो अरुणा परिवार। ओ मेल आयो है चांपासर फड़ोदी सु। भेजन वाला है प्रेम कुमार प्रजापत, आदुराम प्रजापत, लाचा प्रजापति, लीला कुमारी, संतोष कुमार, कोमल कुमारी, तरुण कुमार प्रजापत। नोहर हनुमानगढ़ सु नरेंद्र सुतार, मनोज, हिमांशु, पवन शंकर, शिव कुमार, सोनू, महेंद्र और इनरो सगड़ी परिवार।
1: अरे ना तो हरी रे ना मेरो ए भाई।

कार्यक्रम आप एक राजस्थानी शब्द दया करो, जिनो अर्थ आप बताया करो। आज राजस्थानी शब्द है लिलाड़, जिनो आपने अर्थ बताना है आपकी फरमाइश रह साथे। और अगली फरमाइश आई है भोपालगढ़ सु भजन वढ़ाए राजेश, जय किशन, सोनाक्षी, किशन, आरती, विजय और कमला।

हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: साथीडा जब कभी नुआ साथी है जब आप मेल मारता है पहुंचाने चाहे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले रहा हूँ, 94-133-29-359। इनमें से आपने राजस्थानी शब्द रो अर्थ भी बताना है। राजस्थानी शब्द है लीलाड़। एक बार फिर सुन रहे हो, राजस्थानी शब्द है लीलाड़। इनको कई अर्थ है आप फरमाइश रे साथ बताना है। और ओखत आयो है सादुल शहर जिला गंगानगर सु, भेजनवाड़ा है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, हांडीखेड़ा सिरसा सु राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा।

अखत जगह लगो लग आ रिया है, और अखत आयो है गांव धुंधाड़ा, लूणी सू भेजन वाला है अलादीन धुंधाड़वी, महामेंद्र जोधपुर सू सोहन देवड़ा और कैलाश, खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सू कंवरा राम सारण, सतीश सारण और चंद्रिका, पाथावाड़ा गुजरात सू दिनेश भाई जोगा, पवन कुमार वाला राम।

देवाद्रा सू जबर सिंह भाटी, ओमा कंवर ओम विजयपाल सिंह भाटी, अर शोभा कंवर पड़ियार, ओखत आयो है डांगरी जिसलमेर सू भेजन वाला है बाबूराम जयपाल उगम सिंह भाटी, दिनेश चौहान, गांव बागोरिया सू राजेश गणपत मंगलाराम, होंडू बाड़मेर सू उम्मेदाराम सुरेश कुमार मदन दिलावर।

साथीरा अगली फरमाइश आई है रघुनाथपुरा श्रृंगानगर सु भजनवाड़ा है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी जलालाबाद वैश्य सु सुरेश गगनेजा पूनम विशाल दिशानी निमित आहूजा।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। शाम के 6 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी

0: वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर समय हो चला है गुड इवनिंग जोधपुर का।

दिन भर का शोर अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रहा है। सूरज देवता जो सुबह से जोधपुर पर थोड़े मेहरबान थे, अब मेहरानगढ़ के पीछे छिपने की तैयारी में है। आसमान का रंग सुनहरा हो चला है और इस बदलते मौसम में साथ में मैं हूँ आपके इस शाम को थोड़ा और खास बनाने के लिए। नमस्कार, मैं

जून का ये महीना और जोधपुर की ये धूप एक ऐसी दोस्ती है जो सालों से चली आ रही है। दिन भर चाहे हम एसी या कूलर के आगे बैठे रहे, लेकिन दिन का असली सुकून तब मिलता है जब शाम ढलते ही आंगन में पानी का छिड़काव होता है और मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू हवा में घुल जाती है। आज इस अगले एक घंटे में हम ऐसी ही कुछ छोटी छोटी और प्यारी बातों का जिक्र करेंगे। और हाँ, इस सफर में हमारे साथ होगा बेहतरीन संगीत। तो चलिए इस शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।

श्रोताओ, अभी जब मैं पानी के छिड़काव की बात कर रही थी तो मुझे एक दौर याद आ गया। एक वक्त था जब जोधपुर में गर्मी की शाम का मतलब होता था छत पर सोना। एक वक्त था जब जोधपुर में गर्मी की शाम का मतलब यही था कि हम रात को छत पर सोएं, अपने दादी नानी के साथ में रात को बिस्तर लगाएं, तारे गिनते गिनते उनसे कहानियां सुने और बस ऐसे ही रात निकल जाए। आज हमने उन छतों पर जाना थोड़ा कम कर दिया है। हमारे हाथों में अब मोबाइल फोन्स आ गए हैं और तारों की जगह हम स्क्रीन्स को घूरते हैं। आज शाम मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश करने का मन है कि आज जब वक्त मिले तो 5 मिनट के लिए ही सही अपनी छत या बालकनी पर ज़रूर जाइएगा। वो हल्की हल्की हवा का झोंका आता है ना, वो किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा सुकून देता है। आइए इस सुकून को इस अगले गाने के साथ थोड़ा और गहरा करते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक।
1: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: श्रोताओं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगी कि इन गीतों से पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए है। वो है कि जोधपुर 10 जून उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जोधपुर मंडल के समदड़ी लूनी रेलखंड के मध्य सतलाना यार्ड में संपार फाटक संख्या 227 पर RUB निर्माण कार्य हेतु ब्लॉक जा रहा है। ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण निम्न रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रद्द रेल सेवाएं जो हैं वो है गाड़ी संख्या 74839 भगत की कोठी बाड़मेर, रेल सेवा दिनांक 14/6/26 व 21/6/26 को रद्द रहेंगी। दूसरा, गाड़ी संख्या 74840 बाड़मेर भगत की कोठी, रेल सेवा दिनांक 15/6/26 व 22/6/26 को रद्द रहेंगी। आशंक रद्द रेल सेवाएं, गाड़ी संख्या 14896 बाड़मेर भगत की कोठी रेल सेवा, जो दिनांक 14 व 21/6/26 को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी, वह समदड़ी तक ही संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा समदड़ी भगत की कोठी के मध्य आशंक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14893 भगत की कोठी बाड़मेर रेल सेवा, दिनांक 14 व 21 को भगत की कोठी के स्थान पर

अच्छा एक बात बताइए श्रोता, जोधपुर की शाम का अगर जिक्र हो और यहाँ के स्वाद की बात ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? घंटाघर की भीड़ हो या जालोरी गेट का ट्रैफिक, दिन ढलते ही जोधपुर आइट्स के कदम ना अपने आप ठेलों और दुकानों की तरफ मुड़ जाते हैं। गर्मा गर्म मिर्ची बड़े हो और उनकी खुशबू और एक ग्लास कड़क चाय, ये सिर्फ खाना नहीं, ये हमारा इमोशन है। दिन भर का स्ट्रेस, चाय का वो पहला घूंट जो हम लेते हैं ना उसके साथ, क्या क्या महसूस होता है वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आप भी अपनी इवनिंग टी एंजॉय कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप इस वक्त दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। और इस चाय का मज़ा मज़े को दो गुना करने के लिए सुनते हैं ये बेहतरीन नगमा।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतियाँ रे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से गुड इवनिंग जोधपुर के ये प्रोग्राम में और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट राधिका। आप सुन रहे हैं FM सन सिटी चैनल। श्रोताओं, कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी तेज भागती है ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक टू डू लिस्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन ये जो ढलती शाम का वक्त होता है ना, खासकर जब आसमान का रंग नीले से थोड़ा नारंगी हो जाता है, ये वक्त हमसे कहता है कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा खुद के लिए रुको। ज़रूरी नहीं कि हर पल कुछ प्रोडक्टिव ही किया जाए। कभी कभी सिर्फ आसमान को देखना, किसी पुराने दोस्त से बिना वजह बात करना या यूं ही अपनी पसंदीदा रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अपने पसंदीदा गाने सुनना भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही है। तो अगले कुछ मिनट्स अपनी सारी परेशानियां साइड में रखिए और बस इस संगीत में खो जाइए।

हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहने से बेहतर है कि सब कुछ ना संगीत पर छोड़ दिया जाए। आप बस आराम से बैठिए और एक गहरी सांस लीजिए और इस खूबसूरत शाम के नाम अपना थोड़ा सा वक्त कर दीजिए। अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके हैं, हमारे हैं और इस प्यारे से गीत के हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चलता जब बातें दिल से हो रही हों और संगीत इतना बेहतरीन हो। घड़ी की सुइयां इशारों इशारों में बता रही है कि हमारा इस सफ़र का आखिरी मोड़ आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इन गुजरे मिनटों में आपके दिन भर की थकान थोड़ी कम हुई होगी और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो मेरा यहाँ आना सफल हो गया। जाते जाते एक ही बात कहूँगी, कल का दिन चाहे जैसा भी हो, आज की शाम आपकी है, इसे पूरी तरह से जिए।

श्रोताओं, वक्त हो चला है अब अलविदा लेने का, तो इसी आखिरी गीत के साथ मैं आपसे लूंगी अलविदा। फिर मिलेंगे नई बातें, नए किस्से और ढेर सारे संगीत के साथ आपके अपने स्टेशन FM सांसिटी पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ राधिका, शुभ संध्या, शुभ रात्रि एंड गुड इवनिंग जोधपुर।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। शाम के 7 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: दौर फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे आबास मोहम्मद रफी की थी। बलवीर की आवाजें थी मोहम्मद रफी और बलवीर की, साहिल लुधियानवी की रचना थी और ओपी नैयर की तर्ज थी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर। लीजिए अब सुनिए सावन की घटा फिल्म का गाना। आशा भोसले की आवाज है, SH बिहारी का लिखा गीत, OP नैयर की तर्ज़।

जयमाला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में सावन की घटा फिल्म का गीत। इसे लिखा था SH बिहारी ने, संगीत से संवारा था OP नैयर ने। दिल ही तो है, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अब आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दिल ही तो है इस फिल्म की। ये बेहद खूबसूरत कव्वाली आपने सुनी, आवाजें थी आशा भोसले और साथियों की, साहिल लुधियानवी ने लिखा था और रोशन ने तर्ज बनाई थी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है,
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की।

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए इस कार्यक्रम में अब सुनिए अभिमान फिल्म का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभिमान फिल्म का गीत। अभी आप सुन रहे थे, इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इसका जयमाला कार्यक्रम में आइए लेते हैं बहुत छोटा सा अंतराल।

पाकीज़ा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज थी। कैफ भोपाली ने इस गीत को लिखा था, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गोरा और काला फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग।

राग जय जयवंती पर आधारित सीमा फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की ही आवाज से गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और अब राग यमन पर आधारित एक गीत आपको सुनवा रहे हैं मुनीम जी फिल्म से। ये आवाज भी लता मंगेशकर की है, साहिल लुधियानवी की रचना है, संगीत एस टी बर्मन का।

आगमन पर आधारित बहुत ही सुंदर सी रचना आपने मुनीम जी फिल्म से सुनी, लता मंगेशकर की आवाज में। इसे साहिल उद्यानवी ने लिखा था और एस टी वर्मन ने धुन बनाई थी। राग बिहाग पर आधारित ये रचना सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। रचनाकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर टी बर्मन। फिल्म का नाम आपकी कसम।

की कसम फिल्म की रचना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुनी। इस रचना को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था आर टी बर्मन ने। ये रचना राग बिहाग पर आधारित थी। इसी रचना के साथ ही आज का राग अनुराग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अशोक व्यास की लिखी झलकी एक कुंवारा। निर्देशक है अरविंद माथुर।
1: ओए, माँ बदौलत तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाए और तुम अब तक बैठे हो मुंह लटकाए गंभीर चुप्पी। अच्छा है प्रयास, अरे शादी के बाद की जिंदगी का अभ्यास।
2: ओफो, बंद करो बकवास, मत करो एक दुखी का उपहास। अरे दोस्त, इस तरह की दिल लगी से अब क्या होना है? नहीं हो रही शादी, कमबख्त इसी बात का रोना है।
1: अबे रोना है तो करता क्यों नहीं शादी?
2: कर लू।
1: हाँ हाँ कर ले।
2: हाँ हाँ कर ले, अरे पर करूँ किससे? तुझसे।
1: भाईजान भाईजान, लड़कों की शादी लड़कियों से होती है।
2: अरे यही तो है संकट।
1: संकट? अरे संकट कैसा? अबे जिस नाजनी पर दिल आए, जिस हसीना को दिल चाहे, वही हरि का नाम ले और हाथ उसका थाम ले।
2: हाथ थाम लू मैं? हाँ? और वो भी लड़की का? अरे अरे ये जानता है तू अच्छी तरह, लड़कियों के सामने मैं नहीं रहता, कहीं गुम हो जाता हूँ, धड़कनों के बहाव में कहीं खो जाता हूँ।
1: अरे अरे ये तो खोने लगा। ओ खोने वाले हो सके तो लौट के आना। अरे अरे पर ये हाथ में पत्र कैसा, जरा बताना।
2: नहीं, नहीं,
1: आहा, अरे इस पत्र के साथ तुम्हारा शर्माना घबराना, जरा देखे ऐसा क्या है इसमें फसाना।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: वाह वाह वाह, क्या खूब पैगाम है। अरे भेजने वाला सेठ दौलत राम है, शादी गुणवंती के साथ साक्षात कार्य दामाद। मुबारक।

0: रमजान जी मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऊपर वाले के इस तोहफे को स्वीकार ले, बाप बेटी दोनों को शीशे में उतार ले।
1: ओहो, मजाक ना करो, मजाक ना करो। इतने अहम सवाल से तुम नहीं जानते वो कितने आधुनिक हैं, कैसे रहते हैं, और गुणवंती भी तेज तर्रार है। सब उसको कैनी कहते हैं। इस मौत शॉट कहनी के सामने मैं जैसे तैसे अपना शरीर तो ढो लूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे संभालूंगा सख्त होते होठों को। उसके सामने कैसे बोलूंगा।
0: ओहो, तुझको गूंगा होने से बचाना होगा, इसके लिए मुझे कोई चक्कर चलाना होगा।
1: चक्कर? क्या कोई चक्कर चल सकता है? क्या इस समस्या का भी हल निकल सकता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं हो रहा विश्वास। क्या मुझे करना पड़ेगा उपवास?
0: नहीं प्यारे, हमें करनी होगी रिहर्सल, यानी कि पूर्वाभ्यास।
1: रिहर्सल? पूर्वाभ्यास? ये कैसी पहेली?
0: सुन सुन, कुछ देर में यहाँ आने वाली है मेरी सहेली।
1: तेरी सहेली यानी सोनिया? सोनिया और रिहर्सल? नहीं समझ पाया कुछ, होने लगी है बेचैन सी हलचल।
0: ना समझ बालक, बीत गया समय अब तेरे डरने का। हमारा ध्येय है कन्याओं के सामने तेरी झिझक दूर करने का।
1: वो कैसे महाराज?
0: वो ऐसे समझ ले कि ये कमरा ही है तेरी ससुराल।
1: ये कमरा मेरी ससुराल? ओहो, वो ही बुझो तो जाने वाला हाल।
0: तो कम आईक्यू वाले सज्जन, सीधे शब्दों में कहता हूँ समझाकर। इंटरव्यू होगा पहले तेरा यहाँ सोनिया को गुणवंती बनाकर। लगता है आ गई सोनिया। हेलो सोनिया।
2: हेलो संजय।
0: सोनिया, अभी बात हो ही रही थी तुम्हारी, वो देखो मुंह फेरे खड़े हैं मजबूर ब्रह्मचारी। आओ इधर जाने मन। सोनिया, ये है रमन।
2: रमन? ओह, सुना है आप लड़कियों से बहुत कतराते हैं।
0: हाँ, इनकी समस्या ये ही है कि ये घबराते हैं।
2: कीजिए समस्या का खुलासा।
0: एक कुंवारा शादी का प्यासा, एक इंटरव्यू पर टिकी हुई है आशा, लेकिन लड़कियों के सामने बन जाता है इनका तमाशा।
2: तो अब
0: देवी, हम इसकी तकलीफ दूर करेंगे। तुम बनो गुणवंती और हम सेठ दौलत राम का रूप धरेंगे।
2: ओह, हेलो डैडी।
0: हेलो ज्ञानी बेचे। तो रमन जी, कुछ पल के लिए तशरीफ ले जाइए और वापस इस कमरे को अपना ससुराल मान कर आइए।
1: लेकिन संजय, वो
0: अजी, ये वो को बंद करिए, बाहर जाकर कंघे से संवरिए। ससुराल पहली बार आ रही हूँ, अंदर आते समय उतना डरिए।
1: तो मैं चला
0: जाओ, भगवान करेंगे तुम्हारा भला। बड़ा भोला है रमन सोनिया।
2: कौन रमन डैडी, कैसे सोनिया?
0: ओहो, आई एम सॉरी। सुनो, मैं जा रहा हूँ अंदर तुम्हारी मम्मी के पास, शादी का इंटरव्यू देने आएंगे कोई रमन व्यास। जैसे चाहो सवालत कर लेना, बात कुछ जमे तो मुझे खबर देना।
2: कम इन।
1: मैं आ तो गया हूँ धड़कते दिल को संभाले। हेलो भी उनको कहूंगा अगर वो नजर उठा ले। जी
2: आराम कुर्सी पर बैठे, मैं देखती रहूंगी यही पेस किताब का। देखे क्या हाल होता है नेगलेक्टेड खड़े खड़े जनाब का।
1: जी सुनिए, जी सुनिए।
2: जी कहिए।
1: जी मैं हूँ।
2: तो मैंने कब कहा कि आप उल्लू हैं?
1: जी रमन नाम है मेरा, वो शादी की बातचीत के लिए बुलवाया गया हूँ।
2: तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं?
1: जी नहीं, जी हाँ, वो मेरा
2: आप
1: मतलब
2: शादी क्यों करना चाहते हैं?
1: जी वो सब लोग करते हैं, इसलिए मैं भी। पर वैसे
2: अगर सब लोग शादी नहीं करें तो क्या?

0: आप भी नहीं करेंगे?
1: जी नहीं, जी जी जी हाँ, जी जी जी नहीं, वो मेरा मतलब वो जी जी जी।
0: अच्छा, अपना मतलब फिलहाल भूल जाइए। और शादी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल सवाल के जवाब देने को तैयार हो जाइए। तैयार?
1: जी तैयार।
0: तो ये नारी और पुरुष में आप किसको ऊंचा स्थान देते हैं ये बताइए।
1: ऊंचा स्थान? वो हाँ, वो जी कभी कभी नारी को और कभी कभी पुरुष को।
0: अच्छा, ये नारी वाला कभी कभी कब होता है?
1: जी ये जब पुरुष वाला कभी कभी नहीं होता है।
0: ओह, वेरी इंटरेस्टिंग।
1: हाँ जी।
0: तो अच्छा बताइए कि शादी से पहले रोमांस के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: शादी के पहले रोमांस यानी नट की तरह रस्सी पे डांस, दोनों तरफ गिरना ही है। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो वैसे मेरा एक दोस्त है संजय, एक्सपीरियंस्ड है, उससे पूछकर आपको बता दूंगा।
0: अच्छा अच्छा, बताइए आप तलाक के पीछे क्या वजह मानते हैं?
1: जी तलाक, तलाक के पीछे तो बस एक ही वजह होती है।
0: वो क्या?
1: जी वो है शादी।
0: ओह अच्छा अच्छा, आपको खाना बनाना आता है?
1: जी खाना? जी वो आता तो नहीं है, पर आप कहेंगी तो सीख लूंगा।
0: क्या मैं इतनी अच्छी लगने लग गई? अच्छा, मेरी तारीफ में कुछ कहिए।
1: आपकी तारीफ में मैं? जी वो जी आप हैं।
0: बहुत खूब, यानी कि मैं हूँ। लीजिए डैडी भी आ गए। डैडी, मिस्टर रमन कहते हैं कि मैं हूँ।
2: ओहो, पर तुम इनके बारे में क्या कहती हो?
0: नॉट बैड, चल सकता है।
2: तो मिस्टर रमन, तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम तो पास कर चुके हो, फाइनल में सिर्फ एक सवाल है। मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, कभी डांट दे या तुम्हारे कान खींच दे, तुमको थप्पड़ वगैरह मार दे, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे?
1: मेरे कान खींच दे, मुझे थप्पड़ मार दे, बुरा बुरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा।
2: तो गुणवंती बेटी और मिस्टर रमन, दोनों प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ एक थप्पड़ का सवाल है।
1: बस बस, ये सोनिया जी का थप्पड़ तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, मुझे खाना ही पड़ेगा, तो असली गुणवंती का खाऊंगा, रिहर्सल ओवर।
2: ओके ओके, समाप्त हुआ पूर्वाभ्यास, अच्छा रहा प्रयास, तुम्हारी सफलता की होने लगी है आस। थैंक यू सोनिया, से 3 चीयर्स फॉर रमन व्यास। देखा, हमारा फोन भी बोलने लगा है अपनी चुप्पी से निकल के, समझकर हमारे यार की खुशी ट्रिन ट्रिन करने लगा है मचल के।
0: अब उठाकर देखो भी ये क्या समाचार लाया है, जरूर रमन साहब के लिए गुणवंती का बुलावा आया है।
2: क्यों रमन, नाम सुनकर ही शर्मा गया? भैया सोनिया, अब मजा आ गया। हेलो, कौन? हो दिनेश, प्रेस रिपोर्टर साहब, आज हमें कैसे याद किया आपने, क्या समाचार है? अबे लड़की भाग गई, 50,000 का इनाम भी, लखपति की बेटी। अब भाई मैं लड़कियां भगाने वाला नहीं हूं, यहां तो खुद एक लड़की आई हुई है मुझे भगाने। हाँ सोनिया यही है, ले बात कर।
0: हेलो भाई साहब, किसको भगा दिया आपने? क्या सेठ दौलतराम की बेटी गुणवंती?
1: क्या गुणवंती भाग गई? आए आए, अब मेरा क्या होगा? आए मेरी शादी, गुणवंती भाग गई।
0: अरे ये तो बेहोश होने लगे।
2: अरे रमन, अरे क्या हुआ तुझे? सोनिया पानी लाओ। रमन क्या हुआ तुझे?
0: ये लो पानी।
2: आंखें खुलने लगी हैं, रमन होश में आ रहा है। रमन,
1: रख दिया फोन, आए मेरी ट्रेजेडी और तुम्हारी कॉमेडी, चल प्यारे क्वारे, एक नई गुणवंती, एक नया डैडी।

एक कुंवारा। अभी आप सुन रहे थे अशोक व्यास की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे अरविंद माथुर। ये थी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुखबंदर सिंह और साथियों की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान की तर्ज थी चित्रलोक। कार्यक्रम विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए

कुर्बान हो जाने की जज्बी का। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फुकरे फिल्म का गीत। सोना महापात्रा की आवाज है, संगीतकार है राम संपत।

0: सोना महापात्रा की आवाज में भोगरे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार थे राम संपत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: तनिया। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
4: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
3: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
4: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
5: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत। आवाजें अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। इस संदेश के पहले चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अक्सर फिल्म का गीत। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे और हिमेश रेशमिया का संगीत था। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट

0: हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
0: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों।

0: Aquí.
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता

0: हमारे पास फंडिंग नहीं है बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह

नाली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

तू बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायनी का लिखा गीत था और रवि का संगीत था। विविध भारती से समय सुन रहे हैं आप, आपके लिए कार्यक्रम।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं कन्यादान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की तर्ज है।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार किए जा।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन

0: जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था, OP नैयर ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। मोहम्मद रफी की आवाज़ में लीजिए एक गाना सुनिए। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: मोहम्मद रफी के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है। जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था, जॉनी का हवाला तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण, जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए

0: आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
1: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
0: ये मैं खाना है, जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
1: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
2: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
1: दोस्तों, सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें, उनके पास थे कभी ना खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
0: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा ये फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थी, सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वाह रे जमाने, कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें ये पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगाशो साहब के नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे भिन्नवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगोल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रक कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिरास और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर, वास्ती पहाड़ी सान्याल, बेमिसाल गीता बाली, मधुबाला सुरैया, लाजवाब नरगिस, मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज, शर्मिला टैगोर, बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता आप्टे के मुकाबले में कर चुका हूँ। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने की कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश, कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो, कुछ भूलो या ना भूलो, लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो। वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
3: मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी?
4: पत्ता महेश, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
3: मेरी बेटी कहाँ
4: बैठे? कौन सा बेटे?
3: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
4: हमें कुछ याद नहीं।
3: याद करो, प्लीज याद करो।
4: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
3: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
4: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
3: मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?
4: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
3: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
4: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
0: गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निवाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, यहाँ तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म, पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती

नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा। और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना? छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, आ हा याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

पर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणि माल के बदले गले में, मणि माल के बदले गले में विषधर को लटकाए, अपनी पार्वती को रिझाने

ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है।

0: मतबल ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पटके ढीले कर दिए। कम वक्त देसी मैन जंगली
2: देहाती हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
3: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब्बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, के दुशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
4: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
4: तो अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
4: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए वरना।
2: अरे तो जल जाओगे, हमने जल

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है, वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहां एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को, उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है, उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह,

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को है। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद।